FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवा गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवा गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवा गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

मानव को अक्सर ये भ्रम हो जाता है कि इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो स्वयं वही कर रहा है। किंतु हे मानव, तू ये विचार कर, क्या वास्तव में तेरा इतना सामर्थ्य है कि तू बिना प्रभु की इच्छा के कुछ भी कर सके? इसीलिए गर्व ना कर, क्योंकि ये देह नश्वर है, ये संसार नश्वर है। उस परमपिता परमात्मा ने जो भी तेरे लिए सोचा है वही होगा, इसीलिए तू गर्व ना कर।

0: संवेद सुरों में मातृभूमि के इसी वंदन के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही होता है संपन्न। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे ए हरिहरन, हरिओम शरण, चंद्रो आत्मा और चित्रा सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन बिंदु के अंतर्गत वार्ता सत्य। आलेख डॉक्टर चंद्र किशोर पाठक का है, वाचन कर रहे हैं यतीन्द्र चतुर्वेदी।
1: सत्य मानवीय पक्ष का सर्वाधिक दृढ़ आधार है। इसकी महिमा प्रत्येक धर्म ग्रंथ में स्थापित है तथा व्यावहारिक जीवन की सफलता के लिए इसका प्रयोग भी अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। जीवन में सत्य की स्वीकृति ही सत्प्रेम, सत्प्रयास, सहयोग, सद्भावना आदि की दृढ़ भित्ति बनी। इसके सद्गुणों के कारण नारायण स्वरूप में इसकी पूजा, उपासना और व्रत आदि का क्रम प्रारंभ हो गया। लेकिन इसके वास्तविक स्वरूप को पहचान पाए हैं हम जब तक उसे पहचान कर जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे हम, तब तक वाह्य आडंबर ही रहेगा। किसी के आदेश के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति जंगल में गाय खोजने जाए जिसकी न तो कोई रुचि इस कार्य में हो और न गाय को पहचानता हो, तब परिणाम क्या रहेगा? निश्चित रूप से निरर्थक प्रयास से थक हार कर वापस लौट आएगा। पहले तो रुचिपूर्वक वह गाय को खोजने का प्रयास नहीं करेगा और यदि गाय सामने मिल भी गई तो पहचान न होने के कारण उसे पकड़ नहीं सकेगा। यही स्थिति सत्य की है। आपको सत्य से कितना प्रेम है, चिंतन, भोग, आचरण में सत्य का कितना नैतिक ध्यान रखा जाता है। यदि नैष्ठिक सत्य प्रयोग के आप पक्षधर नहीं हैं, तब पारलौकिक सत्य कैसे मिलेगा? नारायण की प्राप्ति कैसे होगी? सच तो यह है कि आपके नैष्ठिक सत्प्रयास से सत्य का चतुर्मुखी आलोक आपको असीम तृप्ति, अखंड शांति और अनिर्वचनीय आनंद प्रदान करेगा। कौरव पांडवों के शिक्षण प्रशिक्षण का क्रम आचार्य द्रोण के गुरुकुल में प्रारंभ हुआ। प्रथम दिन का पाठ था सत्यम वद। दूसरे दिन पाठ की पुनरावृत्ति पर सभी ने सुना दिया सत्यम वद। लेकिन ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर मौन रहे। तीसरे दिन भी यही क्रम चलने पर आचार्य द्रोण ने सस्नेह जिज्ञासा की, छोटी सी शिक्षा को स्मरण न कर दोहराने की। अत्यंत विनीत भाव से युधिष्ठिर का प्रत्युत्तर था, आचार्य, यह पाठ तो मुझे उसी दिन हृदयंगम हो गया था, लेकिन देखने का प्रयास कर रहा था।

0: कि व्यावहारिक रूप से इसको कितना अपना पाता हूं। उत्तर सुनकर गदगद हो गए आचार्य। सत्य को अपना कर यही युधिष्ठिर धर्मराज बन सके। उपनिषदों ने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा है। मनुष्य चरम सत्य है, उसमें चरम उत्कर्ष का संकेत है। मनुष्य जीवन का हर संभव प्रयास उसकी पूर्णता और सार्थकता में होना चाहिए। मिथ्या से सत्य, मृत्यु से अमृत और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना ही जीवन है। जीवन का लक्ष्य ही हुआ परम सत्य का अन्वेषण, जिससे प्राप्त होता है अखंड आनंद। इसको कल्याणकारी शिव और चिरंतन सत्य से भी जोड़ा जा सकता है। इसीलिए सत्य ज्ञानाश्रित और अनुभवजन्य भी है। सर्व कल्याण मई आनंद की रसधारा इससे ही प्रवाहित होती है।
1: चिंतन बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज का विचार सत्य। आलेख डॉक्टर चंद्र किशोर पाठक का था। वाचन कर रहे थे यतीन्द्र चतुर्वेदी।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीत पद प्रसंग।

विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही, वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है तुम्हें वही शरीर मिलेगा, ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिवजी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग। स्वर सुरेश वाडेकर का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर होगा राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृत भारती। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 6:50 पर होंगी खेती की बातें। विषय होगा दीमक का नियंत्रण कैसे करें। प्रातः 7 बजे आनंद लेंगे भूले बिसरे गीतों का। 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्रज भाषा झलकी पूछंता मूरख नाय कहावे। साथ ही होगा ब्रज की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का पाक्षिक विवरण परकम्मा के अंतर्गत। प्रातः 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आपसे मिलिए के अंतर्गत होगी बातचीत पानी के उपयोग से जुड़ी हमारी संवेदनशीलता। डॉक्टर राजवीर सिंह से भेंट करेंगे ओपी सिंह। प्रातः 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज दर्पण का। प्रातः 10 बजे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे उस्ताद बहाउद्दीन डागर का ख्याल गायन। प्रातः 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस होगा दोपहर 12 बजे। घनश्याम शर्मा मधुप के गाए हुए ब्रज लोकगीत आप सुन सकेंगे 12:30 से। बहनों का कार्यक्रम घर अंगना होगा दोपहर 1:15 से। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा दैनिक जीवन में योग का महत्व और गर्मी की छुट्टी में बालकन को रखें विशेष ध्यान। साथ ही सुनिएगा भेंटवार्ता योग के विविध आयाम। राजेश अग्रवाल से भेंट करेंगे ओपी सिंह। साथ ही आनंद लेंगे ब्रज लोक गीतों का। 2:30 का समय रहेगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। 3 बजे होगा हमारी प्रथम सभा का समापन।

संध्या 5:30 से होगा दूसरे सभा का आरंभ कार्यक्रम युववाणी के साथ। कार्यक्रम में होगी आज की बात, राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस और नशा नाशवान विषय पर। साथ ही सजेगी रेडियो महफिल। संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा मिट्टी की जांच और सॉयल हेल्थ कार्ड।

साथ ही होगी चर्चा खरीफ फसलों के लिए उन्नत किस्मों के चयन पर। सुनेगा भेंट वार्ता पशुपालन से खेती की समृद्धि। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, इनसे भेंट करेंगे वीरेंद्र सिंह। संध्या वंदन, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 6:45 से। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा में आज होगा भक्ति और मर्म का प्रसंग। कथाकार होंगे गोविंद गोस्वामी। समय रहेगा संध्या 7:05। संध्या 7:31 पर सुनेगा श्रोताओं के संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी, विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:00। रात्रि 9:15 का समय रहेगा सुहाने तराने का। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी दूसरी सभा का समापन। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातों के अंतर्गत दीमक नियंत्रण कैसे करें इस विषय पर जानकारी जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: दीमक एक बहुभक्षी कीट है जिसकी लगभग 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 300 प्रजातियां फसलों वृक्षों एवं लकड़ी आदि को अधिक क्षति पहुंचाती हैं। कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली दीमक फसलों के बचे हुए अवशेष कार्बनिक पदार्थ आदि को अपना भोजन बनाती हैं। यह सब न मिलने पर वह खड़ी फसलों को काटकर नुकसान पहुंचाती हैं। खेत में इसका प्रकोप फसल बोने के साथ ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसका नियंत्रण करना भी कठिन हो जाता है। दीमक से फसलों को क्षति होती है। दीमक का भोजन सेलुलोज होता है, अतः जिस भी वस्तु में से सेलुलोज पाया जाता है यह सब दीमक का भोजन होता है। यह बहुभक्षी कीट है। इसका प्रकोप गेहूं व गन्ने की फसल पर सर्वाधिक होता है। इसके श्रमिक ही हानिकारक होते हैं। यह गेहूं की जड़ों तथा तने पर आक्रमण करते हैं, जिससे फलस्वरूप नए पौधे के कल्ले तथा पुराने पौधे के तने सूख जाते हैं। गेहूं के अतिरिक्त भी ये अन्य फसलों में भी नुकसान पहुंचाती है। दीमक अपना काम रात में करती है तथा दिन में छिपकर रहती है। खेत में दीमक का प्रकोप सरलता से पहचाना जा सकता है। प्रभावित पौधे कटे हुए दिखाई देते हैं, उन पर मिट्टी के कण भी चिपके रहते हैं। पौधों को उखाड़ने पर दीमक जड़ों में दिखाई भी पड़ती है। अब बात करते हैं दीमक का प्रबंधन हम कैसे करें इस बारे में। बरसात के शुरुआत में दीमक के झुंड अपने निवास स्थानों से निकलकर रोशनी की ओर भागते हैं, इसलिए खेतों बागों तथा अन्य स्थानों पर प्रकाश प्रपंच यानी लाइट ट्रैप लगाने चाहिए। साथ ही प्रकाश प्रपंच के नीचे क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी पानी में मिलाकर तसले में रख दें, जिससे जमीन पर गिरने पर प्रौड इसमें डूब जाएंगे और मर जाएंगे। खेतों में कभी भी बिना सड़ी गोबर की खाद न डालें, क्योंकि कच्ची गोबर की खाद दीमक का भोजन बनकर उनकी बढ़ोतरी में सहायता करती है। फसलों की कटाई के बाद उनके ठूंठ समूल नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा फसलों के खेत में रहने से उनके ठूंठ से ये भोजन प्राप्त करती हैं तथा अपनी बढ़ोतरी करती हैं। गर्मियों में खेतों की जुताई आवश्यक है, क्योंकि जिन खेतों में ज्वार बाजरा तथा अन्य फसलों के अवशेष रह जाते हैं उन पर दीमक अपना जीवन यापन करती है। फसलों की कटाई के पश्चात खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे भूमिगत दीमक ऊपर आ जाएगी और पक्षियों द्वारा खाने से नष्ट हो जाएगी। जिन खेतों में लगातार धान के बाद गेहूं उगाया जाता है वहां दीमक के प्रकोप में बढ़ोतरी होती है। बुवाई के पहले भूमि में नीम की खली 50 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिलाना चाहिए। यह दीमक को नष्ट कर देता है। खेतों या बागों में जहां पर दीमक द्वारा बनाए गए मिट्टी के टीले हों उनको कीटनाशी घोल से तर करके या फोरेट

0: 10G ग्रेन्यूल्स का घोल इन टीलों में प्रवेश करवा देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन टीलों में एल्युमिनियम फास्फाइड से धूमीकृत भी किया जा सकता है। इस विधि से दीमक नष्ट हो जाती है। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप पूर्व वर्षों में भी रहा हो वहां पर कीटनाशकों से बीजोपचार करके ही बुवाई करनी चाहिए। बुवाई के 4 घंटे पूर्व क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 25 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के साथ इसका उपचार करके ही बुवाई करें। खेत के चारों कोनों और मध्य में 1 मीटर चौड़ा तथा 2 फीट गहरा गड्ढा खोदकर इसमें ताजा गोबर डाल दें। खेतों के सब दीमक इस गोबर में आ जाते हैं। दीमक दिखने के 3 से 4 दिन बाद इस गड्ढे में क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 20 मिलीलीटर प्रति टंकी पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। इससे खेत के सभी दीमक नष्ट हो जाते हैं तथा पूरे खेत में कीटनाशी का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता।
1: दीमक का नियंत्रण कैसे करें, इस विषय पर दे रहे थे जानकारी विजय सिंह नौलखा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

मुकेश के सुर में आशिक फिल्म से अभी आप सुनाइए ऐसे गीत। शब्द शैलेंद्र के थे, संगीत दिया था शंकर जय किशन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आर पार से। स्वर गीता दत्त का है, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने।

सुरैया और शाम के संयुक्त स्वरों में दिल्लगी फिल्म से अभी सुना आपने ये गीत। शब्द शकील बदायूनी के थे, संगीत दिया था नौशाद ने। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: का एहसास।
1: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं दुलारी फिल्म में शमशाद बेगम को। शब्द रचना शकील बदायूं ने की है, संगीत से सजाया है नौशाद ने।

शैलेंद्र के शब्दों से सजा, एसडी बर्मन की धुन और स्वर से सजे हुए इस गीत को बंदनी फिल्म से अभी आपने सुना। इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का सफर यही होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: थी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
0: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
0: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को कराया है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। और गृह मंत्री अमित शाह ने की श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर कल लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
6: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं।
4: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जनकल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। श्री योगी ने कहा कि यह नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
6: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का
7: कार्य प्रारंभ।

0: होने जा रहा है तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ और गोरखपुर में अलग अलग विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री योगी आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 955 करोड़ की लागत से 39 विकास परियोजनाओं और गोरखपुर में 295 करोड़ रुपये की लागत वाली 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIRNews_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी क्रम में विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के प्रयासों पर एक रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री सीमा तय कर दी है। अब किसी पेट्रोल पंप पर प्रति वाहन या प्रति व्यक्ति 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीदा जा सकेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि यह प्रतिबंध 90 दिनों के लिए लगाया गया है। देश के दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का कल दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 49 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आज वाराणसी में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जसपाल राणा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मरिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्षों में

0: महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को कराया है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। और गृहमंत्री अमित शाह ने की श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी श्रोता साथिन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया, आज के कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं ब्रज की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के पाक्षिक विवरण परकम्माते। यह के वार्ताकार हैं चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार।
1: ब्रजभूमि इंदनन पुरुषोत्तम मास की आध्यात्मिक आभा से आलोकित है। श्रद्धा, भक्ति, सेवा, समर्पण को ऐसो अद्भुत संगम देखे को मिल रहे है, जाते संपूर्ण ब्रज मंडल को भक्त रस में सराबोर कर दियो है। सनातन परंपरा में अधिक मास को भगवान विष्णु को प्रिय मास मान्यो गयो है। यही कारण है कि जा महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात है। मान्यता है कि जा पवित्र महीना में करे गए जप, तप, दान, सेवा और तीर्थाटन को पुण्य कई गुणों बढ़ जाए। पुरुषोत्तम मास के मौके पे ब्रज के मंदिर में, आश्रम में वर्ष भर मनाए जावे वाले विविध धार्मिक उत्सव को आयोजन करे गयो है और जे अभी जारी है। जैसे के दीपावली, होली ये त्योहार साल में एक बार आमे, जा महीना में ये त्योहार विभिन्न आश्रम में, मंदिर में बायकायदा मनाया जाए। कहीं दीपावली की झिलमिलाहटी छटा दिखाई दे रही है तो कहीं होली के रंग में भक्त सराबोर है।

विभिन्न आश्रम और मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान, कथा, कीर्तन, भजन, संध्या को निरंतर दौर जारी है। जा महीना सबसे बड़ा आकर्षक ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा है, जो अभी बरकरार तौर पर चल रही है। लगभग 250 किलोमीटर की ये पावन परिक्रमा उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद से होते हुए अलीगढ़ के कछु इलाके में, राजस्थान के भरतपुर और डी और कामा, हरियाणा के पलवल क्षेत्र तक फैली हुई है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में 84 कोस की परिक्रमा करवे बारे नु अक्षय पुण्य की प्राप्ति हुए। इस आस्था से प्रेरित है कि देश के विभिन्न भागन ते श्रद्धालु ब्रज पधारे और परिक्रमा करके निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पे सेवा भाव को अनुपम दृश्य दिखाई दे रहे हो। जगह जगह प्याऊ लगाई गई है, कहीं शीतल जल की प्याऊ के साथ साथ सर्वतु वितरण करे जा रहे है, कहीं भोजन प्रसाद की व्यवस्था करी गई है। अनेक समाज सेवी संस्थाएं और श्रद्धालु परिक्रमार्थी ने के काजे विश्राम गृह बनाए गए हैं, जहां रात्रि में परिक्रमार्थी विश्राम कर रहे हैं और उनके काजे भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गोवर्धन, बरसाना, नंदगाम, गोकुल, दाऊजी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल पर श्रद्धालु के काजे विशेष व्यवस्था करी गई है और ये सब स्थल आस्था के केंद्र बने हुए हैं। परिक्रमार्थी श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन कर रहे हैं तो कछु बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन के अन्य मंदिर में दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुरुषोत्तम मास के दौरान द्वारकाधीश में कमल तलाई उत्सव को आयोजन भयो, जे श्रद्धालु ने कहा बड़ो आकर्षण को केंद्र बने रहे हो। जा उत्सव में ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज को कमल से सुसज्जित मनोरम तलाई में विराजमान कर भक्तों दर्शन कराए गए। भगवान को यह अलौकिक स्वरूप श्रद्धालु ने भावेभोर कर गयो। पुरुषोत्तम मास के जा पावन अवसर पर ब्रजभूमि भक्ति सेवा आध्यात्मिक उल्लास के रंग में रंगी भई है। मंदिर की घंटियां, भजन कीर्तन की स्वर लहरियां, परिक्रमार्थियों की अखंड आस्था मिलके ऐसो वातावरण बनाए रही हैं, जाते ब्रज की सनातन सांस्कृतिक विरासत और बाकी जीवंत आध्यात्मिक चेतना को साक्षात दर्शन है रहे हो। यही पखवाड़े वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में ठाकुर केशव देव के भक्तों द्वारा साधु सेवा और भजन संध्या को आयोजन करो गयो। कार्यक्रम को शुभारम्भ आश्रम के महंत और कथावाचक अनुरुद्धाचार्य ने दीप जलाए के करो। भजन गायक मनमोहन और घनश्याम रसिक ने भजन प्रस्तुत करे, जिनमें एक भजन बांके बिहारी तुम्हें देख मेरे नैना उलझ गए भजन गायो गयो। जाई तरीका थे बनवारी लाल भजन गायक ने राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी भजन गायो और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दियो। जा अवसर पर संत और शिष्यन मिलके परिक्रमार्थियों की सेवा करी। बरसाना के समीप गहवर वन मंदिर में नर्मदा पुत्र के नाम से विख्यात दादा गुरु पधारे। दादा गुरु भैया जी संत रमेश बाबा से भेंट कर भी पहुंचे और उनते समसामयिक विषय पर विचार विमर्श हुआ। दोनों संतन ने यमुना के शुद्धिकरण, गौ सेवा, ब्रज के वनों के संरक्षण पर लंबी वार्ता करी और यह निर्णय लियो कि नर्मदा के शिष्य और गहवर वन के जुड़े हुए शिष्य मिलकर ब्रज की हरियाली आगे पनपाएंगे और जय हरे भरे करेंगे। संत रमेश बाबा ने नर्मदा पुत्र के नाम से विख्यात दादा गुरु भैया जी के प्रयासों को सराहना करी और आने वाली पीढ़ी ने के काजे ब्रज हरित और समृद्ध बनावे के काजे मिलकर कार्य करने को संकल्प व्यक्त करो। रामायण प्रचारणी समिति के तत्वावधान में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर चित्रकूट के मंच पे बाली सुग्रीव हनुमान प्रसंग पर आधारित नौटंकी को मंचन करो गयो। जा प्रस्तुति की रचना महेश व्यास ने करी। कलाकार ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर लोक नाट्य शैली में प्रभावशाली ढंग से मंचन प्रस्तुत करो। कार्यक्रम को शुभारम्भ पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग ने करो। आयोजन में उमाशंकर अग्रवाल, लक्ष्मण प्रसाद यादव समेत अनेक समाज सेवी नो सहयोग प्रदान करो। जहाँ नौटंकी मंचन के संयोजक मूलचंद गर्ग रहे। समापन पर कलाकार नो सम्मानित करो गयो। GLA विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा संगम नाम को एक कार्यक्रम भयो, जामे तमिलनाडु और पांडिचेरी से आए करीब 5 दर्जन युवा युवतियों ने 10 दिवसीय कार्यशाला में भाग लियो और उन्हों तमिल में अपने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत करी और ब्रज की प्रस्तुतियां स्थानीय कलाकारों करी। यही क्रम में उन युवा युवतियों गीता शोध संस्थान वृंदावन में भ्रमण करो।

0: जहाँ अवसर पर एक विशेष गोष्ठी को आयोजन भयो, जहाँ गोष्ठी में पंडित महेश चंद शर्मा ने गीता और संविधान विषय पे अपनो व्याख्यान दयो। चंद्र प्रताप सिंह ने ब्रज के लोक जीवन पे और डॉक्टर उमेश चंद शर्मा ने ब्रज की मंदिर दर्शन परंपरा पे पांडिचेरी और तमिलनाडु से आए युवाओं को विचार व्यक्त करे। कार्यक्रम के समापन पर वे सभी छात्र युवा सम्मानित करे गए। मगुर्रा के जानकी मंदिर में श्रीमद भागवत कथा को आयोजन करे गयो, जहाँ में छठवें दिन गोवर्धन लीला को भव्य मंचन देखने के गाजे आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कथावाचक पंडित रामवीर शास्त्री ने गोवर्धन लीला के आध्यात्म महत्व पर प्रकाश डाले और बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासी नु बचावे के काजे कैसे उनकी रक्षा करी। कथा श्रवण में मगुर्रा और आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। बरसाना के राधा रानी मंदिर में गिर्रा सेवा मंडल आगरा के द्वारा दिव्य फूल बंगला को आयोजन करो गयो, जहाँ अवसर पर विशेष पोशाक सेवा और प्रसादी का वितरण भयो। जहाँ अवसर पे मंदिर को आकर्षक पुष्प सज्जा से सजाया गयो, श्रद्धालु ने राधा रानी के दर्शन कर वहाँ अपनी दक्षिणा भेंट करी, संतन को सम्मान करो और उन्हें प्रसादी वितरित करी। फूल बंगला के दर्शन करवे के काजे बड़ी संख्या में बाहर से श्रद्धालु पहुंचे। गोवर्धन के रसिक बिहारी आश्रम में राधा बिहारी सेवा संस्थान के तत्वावधान में गुरु कृपा महोत्सव का आयोजन करो गयो। महोत्सव में मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र देवाचार्य महाराज ने स्वामी श्री हरिदास ब्रज रज महिमा आदि विषय पे भावपूर्ण वर्णन करो। उन्होंने बताया कि ब्रज के मंदिर संत परंपरा और यहाँ की ऐतिहासिक विरासत किस तरीका से पूरे संसार में अपनी छाप छोड़े हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी किशन देव ने करी। साध्वी पूर्णिमा बाबा बिहारी दास ने भजन प्रस्तुत करे, जहाँ मौके पे अन्य भक्तनों ब्रज के संतन की कृपा को उल्लेख करते हुए बतायो कि आज संपूर्ण ब्रज में राधा नाम की जो मधुर गूंज उठी है वो परंपरा लगातार बढ़नी चाहिए और जाको पूरे संसार में ध्वनि गूंज रही है। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर श्री कृष्ण जन्म स्थान के रंगमंच पर श्रीमद भागवत कथा को आयोजन भयो। ये कथा वृंदावन के भागवताचार्य पुंडरीक महाराज ने करी। कथा में श्री कृष्ण लीला महोत्सव समिति द्वारा गोवर्धन लीला के मंचन पर विशेष छप्पन भोग को आयोजन करो गयो। व्यासपीठ से श्री कृष्ण की विविध लीलन के साथ साथ गोवर्धन पूजा और इंद्र दमन आदि पर श्रद्धालु नु जाको महात्म को वर्णन करो गयो। जा पखवाड़े इन सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा वो बहुत सारे कार्यक्रम पुरुषोत्तम मास के अवसर पर चल रहे हैं। मंदिर में, आश्रम में, सार्वजनिक स्थान पे हर जगह भक्ति को वातावरण दिखाई दे रहे है और पूरे ब्रज में राधे राधे की गूंज है रही है।
1: तो अभी आपने सुनो ब्रज की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को पाक्षिक विवरण परिक्रमा के अंतर्गत। और आओ भैया अब सुनाइए ब्रज भाषा झलकी। पूछनता मूरख नाय कहावे, या को आलेख गोपाल प्रसाद मुद्गल को है।
2: पूछनता मूरख नाय कहावे, आइए सुनते हैं गोपाल प्रसाद मुद्गल की लिखी ये ब्रज भाषा हास्य नाटिका। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं हरि बाबू कौशिक।

0: हुआ कि दादा क्या कर रहे हो?
1: अरे मैं बहरा है गुम का जो करे फारे ही डाल रही है, क्या बात है?
0: आज तो इतने करे काय को पढ़ रहे हो, इम्तिहान में काय को दिखा रहे हो? मैं तो सूदम सट्टे से पूछ रही हूँ।
1: अरे भगवान भूम रहे काय को धाय धाय कर रही है, कछु बोल बकर तो सही।
0: बात ये है कि मैंने चाय रांध ली है, या अखबारे छोड़ो तो चाय परो दो।
1: ये अखबार का चाय पिएगो? चाय तो मैं पीऊंगो।
0: चाय तो जब ही पियोगे जब अखबारे छूटेगो। तुम तो या में ऐसे घुस रहे हो मानो काई भैंस सी है चौंक रहे हो। ए ये लो चाय और बताओ कैसी रांधी है।
1: अरे ओ परमेश्वरी देख तो सही, या में घ्यो के तिलूला कैसे तैर रही है।
0: तैरेंगे चौना है या में छटा के घ्यो डारो है छोंक दियो है।
1: ओफो जाए भैंस पानी में, इतने कहा की हो।
0: चो हमने तो तेरा लाड़ लड़ाया, तुम ऐसे कह रहे हो।
1: अरे भाड़ में जाए सो तेरो लाड़, तेने तो सबरो गुड़ गोबर ही कर दियो। ले एक काम कर, ये सपत्ती तू ही पी ले।
0: खूब रही, गधा को दियो गुलकंद और बाने कही कि हमारी आंखें फूर दे।
1: ओहो गुलकंदी या गुलकंदे तू ही ले ले, मुंह पे तो मेहर कर ले।
0: हाय राम कैसे इतराए रहे हो, तुम्हें मेरी सौगंध है, पी के तो देखो पीछे कछु कीजो।
1: तू तो अड़पा कर रही है और मोया देखत खेमी फुरफुरी आ रही है।
0: हाय राम मैंने तो यमे सदलोनी डारी है, मुर्गी तो जानते गई काजी जन ने स्वाद ही ना आयो।
1: अरे तेने चाय कू का चूरमा समझ राख्यो है, तू अगर जानत ना है तो पूछ लेती, पूछनता मूर्ख ना है कहावे।
0: अब ज्यादा नखरे तो दिखाओ मतीना, चुपचाप पी लियो। घ्यो डरी भैये पेट भरी गुन करेगी कछु ना कछु तो।
1: ले तू ना माने तो आंख बीच के पिए लो।
0: फिर बताइयो कैसी बनी है। जो की है?
1: अरे या में नॉन मिर्च को स्वाद कैसे आए रे भाई।
0: अरे चो लो ना लगाओ, नॉन मिर्च डारो तो हती ना है। हाँ साग की हाड़िया में जरूर रांध लई।
1: ओहो चूखो करेला नीम पे और चढ़ाए दिया, तेरी मर्जी। ले मैं तो यह गरी के नीचे उतारे लू। बोल अब, बोल अब, बोल कहा के परमेश्वरी।
0: अब क्या कहूँ, देखो जी आज तैयारी छुट्टी है।
1: बिल्कुल छुट्टी है।
0: तुमको तो नेक्स्ट हलवा रांध लो।
1: हलवा? तेरी जीव तो बड़ी लपर के ले रही है, तू कछु पतो हुए? यह महंगाई में चीजन के भाव तो आसमान छू रहे हैं और काम में तो और आग बढ़ रही है, सब चीजन के दाम ढोड़े और दुगने देने पर
0: आए है। तो हमें कौन सा थोक को व्यापार करना है, घ्यो तो घर में हती
1: है।
0: चूनू है?
1: बिल्कुल हत है।
0: खाड़ चाहिए सो ज्यादा से ज्यादा आधी किलो और का।
1: अच्छी बात है, तो तेरी मर्जी है तो ले हलवा ही बनाए दार। ये ले
0: रुपया,
1: तीन रुपया और मंगाए ले खाड़।
0: अच्छा
1: और बनाए ले हलवा, देख हलवा ने गतको बनाई लेगी ना।
0: अच्छा तो काम इते को ना जाने, तुमने तो हमें नीरी फुआरिया ही समझ रखी है।
1: मैं फुआरिया तो नहीं कह रहे हो, पर ये कह रहे हो न जानती हो तो पूछ ले, पूछन ता मूर्ख ना कहावे।
0: आज तुम देखियो तो सही, मैं ऐसो हलवा रांधूंगी कि तुम हलवा ही हलवा चिल्लाते फिरोगे।
1: तो तू हलवा बनाए ले और नेक मुझे अखबार दे दे, मैं यकी खबर पढ़ लूं।
0: अच्छा अखबार ले, भाड़ में जाए अखबार, आज तो छुट्टी को दिन आए, नहाओ धो खाओ पियो और कछु प्यार से हमते बतराई लियो करो।
1: अच्छा अच्छा तो तू हलवा तो बनाए सही, मैं नहाए धो के हवा ला में तू बनाए ले हलवा।
0: ला चुनाई भर रही है आज तो। इलची का भयो हलवा में तो निरे गुठला ही गुठला है गए, अब काकी हो जाए कि गुठला फूट जाए तो चुक होए, ना तो या को सीरो ही बनामना पड़ेगो। आजी कलुआ के दादा, ओ कलुआ के दादा सुनो नाव का, या हलवा में तो गुठला ही गुठला है गए।
1: अरे मैं तो पहले ही जानतो हो, लाल परोसा में बैंगन आए ब्याह के लखन तवई पाए।
0: तो इन पर सोकला ने काय को सरकाए रहे हो, अब है गो सो है गो, अब का की हो जाए जाको ये बताए दो।
1: अब तू ही जाने, तू जान तेरो काम जान, मैं कछ नहीं जानू।
0: देखो तुमको तो थोड़ा सा पानी और डार के गुठलान ने फूर के हलवा को सीरा बनाए लो।
1: सीरा बनाए ले, पर एक बात सुन ले, सीरा बनाना जाने के ना न जानती हो तो पूछ ले, पूछनता मूर्ख ना का आवे।
0: अच्छा हमें हलवा बनाना ना आवे तो का सीरा रांध बनाए आवे।
1: ओफो फिर का है, सीरे बनाए ले हमें का है, हमें तो खाए हुए थे मत बन।
0: अच्छा अरे भगवान जी, कोठला तो जान लेवा है गए, फूटवे में न आ रहे, पानी पे पानी की धमार कर दी। अब का होएगा, आ गई समझ में तो लंबो सिरा होए तभी बात बने। लंबो सिरा ही आजी कलुआ के दादा, कलुआ के दादा का कर रहे हो?
1: हाय हाय, आज तो तेने नाक में दम कर दई। अरे कहा के है बोल।
0: अजी देखो यार, सीरा के गुठला फूटवे में नहीं आ रहे। आय हाय, तुम कहो तो यहाँ में ज्यादा पानी मिलाए के लंबो सीरा बनाए लूँ तो कैसो रहेगो?
1: अब तुम मेरे प्राण ने मत चाटे, जो बनाना चाहे सो बनाए ले, पर लंबो सीरा बनाना जाने के ना न जानती।

0: हो तो पूछ ले, पूछनता मूर्ख नाय कहावे।
1: अच्छा तो तुमने तो वे निरी गमारन जान रखी है, हलवा और सीरा नाय बना सकूं तो का लंबो सीरा नाय रांध सकूं।
0: अरे अब तू जो चाहे सो बनाए ले।
1: हे भगवान, आज जाने कौन को मोहड़ो देखो है, गुटला उठवे में नाय आ रहे। लंबो सीरा नाय बन सके, अब का की हो जाए। अब तो कलुआ के दादा कहेंगे, जामे आधी किलो चीनी के देख पानी मालूम ही ना पड़ रही है, फिर को फटे गयो को है। अब का करूं? हे भगवान, कलुआ के दादा थे कैसे कहूं? आजी कलुआ के दादा, कलुआ के दादा।
0: हाँ कहा के बोल।
1: देखो ये लंबा सीरा गुरमानी ते पत्रो है गो है।
0: अरे और नहीं कहा है, तो
1: जो गुठला ना फूटे, अब का की हो जाए जाको तुम ही बताओ।
0: अब ये लंबे सीरा को और कछु नाय बन सकाए का?
1: अजी तो इतने लाल ताते काय को है रहे हो, तुम पे का कछु बिगड़ ना जाए।
0: ओफो, तो बिगड़ बे क्यों, तो हद होए। हलुआ ते तो सीरा बनायो, सीरा ते लंबो सीरा बनायो, और लंबे सीरा ते अब कछु और नाय बन सके का?
1: बन सके मेरे हार, बोलो का कहो।
0: अरे कहूं कहा, तो गढ़े न डूबे, लोग तो महंगाई में दाने दाने उतरस रहे हैं, और तू जैसी है कि नाज बिगाड़ भी पतुली भई है।
1: अजी अब बिगड़ गो सो बिगड़ गो, अब तो ई बने ना है, चाहे तुम सौ मुड़ के चौना है जाओ। मैं तो भूम रहते करती करती मर चली, और तुम्हारे माथे पर सरवटी पड़ी जाए।
0: देख रही, मेरे तो पीते पजर रहे हैं, सऊर तो ढीला भरू हतुरा है, कछु मैया बापन के वहां सीखो हुआ के ना सीखो।
1: अच्छा देखो, मेरे मैया बापन तक तो पहुंचो मती ना, ना मेरे से बुरो को ना होगा।
0: अरे ना होगा ना होगा, तू ते बुरो, तू का करेगी, तेरे मन में है कहा बोल।
1: करूंगी का, माँ के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, सब छठी को दूध याद आ जाएगा।
0: अब तू लंबे सिराए लेके मेरे सामने हट जा, हट जा मेरे सामने ते, नहीं तो कछु ते कछु है जाएगा।
1: का है जाएगा?
0: देख मेरी बात मान ले, सामने ते हट जा, ना तो लंबे सिराए फेंक दूंगा भाई।
1: आई तुम का फेंकोगे, लंबे फेंक दूं।
0: ओफो, अरे भगवान, तेने ये कहा कियो, तो पे सीधा फेंको ना आयो, कोई गेल में चलतो गेलाउ जाय रहे होएगो, और बापे पर गयो तो आज लेवे के देवे बीतेंगे। ले जो सोच रहे हो वही है गयो ना वही।
2: अरे छंगा, ओ छंगा, अरे किवार खोल, क्यों ना खोले। अरे किवार खोल, त्यारी धोरे धूपर फूट गई दोनों की, सबरे कपड़ा बिंगार दिए हाँ तो कहिए।
0: भैया अरे ओ हीरा,
2: अरे काके रोए।
0: अरे माफी दे मेरे यार, तेरे हाथ जुरू, इन कपड़ान ने उतार दे, धोए के भिजवाए दंगो, तू मेरे धोए धोवाई कपड़ान ने पहर जा। ओ परमेश्वरी, अरे नक सिंदूक में ते धोती कुर्ता लाए के तो घाय दे जाए।
1: तो ये देख चो ना राय रहे हो, मेरी माते सबरे दोष है, जो कछु दोष है मेरे ही माथे मड़ो जाएगो। तुम सीरा की छीने झपटी ना करते तो मैं काय को फेंकती?
0: अच्छा तेरी गलती ने कहू ना है, वाह परमेश्वरी वाह।
2: अरे तुम पे तो अपनी लड़ाई की पड़ी है, हाँ तो कहिए, और मैं नंगो धरंगो यहाँ ठा रहा हूँ, मेरा स्वांग बना रखे हो तुमने, देख लो ये दुनिया तमाशो देख रही है। अरे और भाभी, अरे भाभी सुने के ना सुने भाभी, अरे कपड़ा ला दे, अरे फिर खूब लड़ियो आपस में, अरे मेरा खूब स्वांग निकालो तुमने।
1: देखो लाला जी, ज्यादा चीचे पर तो करो मती ना, जे लियो धोबती और जे रो कुर्ता, और चुपचाप पैर के जाओ यहाँ से। हम तो मदर भाई आ रहे हैं, ऐसे लड़ेंगे तुम क्या कर लोगे?
2: अरे भाभी, हम पे काय को मन्ना रही है, भन्ना रही है, एक तो गलती कर रही है और तान और तुर रही है, मैं हूँ और कोई होता तो चांद को हलवा बनाते तो हलवा हलवा।
1: अच्छा हलवा बनाए हुए को हंसी ठट्टा ना है?
2: तो का भाई बताऊं,
1: मालूम पड़े बताए तो सही ना।
0: अरे हीरा, तू भैया अपने घर जा, काहे को लड़ाई आते, अरे चमूड़ मार रही है।
2: अरे भैया तेरे माऊ जाऊं जबई तो, नहीं तो भाई हाँ तो कहिए।
1: ना तो हलवा ही बनाए के जा तो।
0: अरे भाई
1: आयो है कहीं को।
0: अरे चुप है जा, काहे को लड़ रही है, काहे को लड़ रही है, तेरे हाथ जोड़।
1: आज ही तिहारी सौ सुनूंगी, पर एरे गेरे नथू गेरन की कछु ना सुनी जाए मोपे।
0: हाय हाय, या समय तो बड़ी सियानी की सी बात कर रही है, पर भूम रहे थे एक ना मानी, काहे गयो तो सवेरे थे।
1: भूम रहे थे नाय मानी तो संजा को तो मान नहीं हूँ, सवेरे को भूलो संजा को, घर आए जाए तो भूलो नाय कहा है। और देखो जी, 100 टक्कर लगे तो एक सीख आवे। अब एक बात हाथ लगी है,
0: कहा
1: कि पूछन ता मूरख नाय कहा।
0: यही तो मैं कह रहे हो,
1: देखियो अब तो यही है मान के चलो।

0: प्यारो और कौन होगा जब जइए मान लोगी तो।
1: पर तुम ते ज्यादा प्यारे और कौन होंगे। तो एक बात सुनो।
0: सुनाओ।
1: देखो आधी किलो चीनी और मंगाए लियो। तो फिर कत्ता तुम ते पूछ पूछ के हलवा बनाए दूंगी, क्योंकि पूछनता मूरख तो होवे ही ना है।
0: ये पूछनता मूरख नाय का।

0: पूछंता मूरख नाय कहावे। अभी तक आप सुन रहे थे गोपाल प्रसाद मुदगल की लिखी ये ब्रजभाषा हास्य नाटिका। इसमें भाग लिया हरिबाबू कौशिक, विमल अरोरा और राधा बिहारी गोस्वामी ने। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे हरिबाबू कौशिक।
1: तो भैया, या ब्रजभाषा हास्य नाटिका के बाद में आओ सुनाइए ब्रज लोकगीत। जय स्वर दियो है हरिकिशन ने।

तो भैया हरे कृष्ण के स्वर में गाए भई आई ब्रज लोक गीत के संग आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यही हुए है संपन्न। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज होगी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
6: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
2: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
0: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है।

0: अलका याग्निक और कुणाल गंजावाला को अभी आपने सुना। फिल्म थी सिलसिले, बोल समीर के थे, संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
4: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये
4: मेरी गुड़िया के नाम।
5: पर दादी, आपके नाम?
6: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
6: आरबीआई कहता है?
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: हमारी जनगणना हमारा विकास।
8: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
9: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म सोल्जर में। शब्द समीर के हैं, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

लव जंजुआ सूजी क्यू और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म सिंग इज किंग में। शब्द मयूरपुरी के थे, संगीत दिया था प्रीतम ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सोनू निगम और संजीवनी के स्वरों में अभी आपने सुना सोचा न था फिल्म से ये गीत। शब्द रचना इरशाद कामिल की थी, संगीत दिया था संदेश शांडिल्य ने। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आपसे मिलिए क्रम के अंतर्गत बातचीत, पानी के उपयोग से जुड़ी हमारी संवेदनशीलता। डॉक्टर राजवीर सिंह से भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, प्रकृति के जितने भी घटक हैं, पानी उसमें से महत्वपूर्ण है। बिना जल के जीवन की संभावना को हम नहीं सोच सकते। जल है तो कल है, ऐसी कहावतें हमारे आसपास प्रचलित रहती हैं। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति में जहां विशेषकर प्रकृति के तत्वों के प्रति इतनी पूज्यता का भाव है कि हम नदियों को पूजते हैं, तालाबों को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, तो हर चीज के पीछे पूज्य का भाव देखने का मतलब यही है कि उनके संरक्षण की भी आवश्यकता है और बिना उनके हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि ये पूज्य का जो भाव है वो कहीं तिरोहित हो रहा है और जो संवेदनशीलता है चीजों के प्रति वो कहीं कम हो रही है, तो आज हम ये बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजवीर सिंह साहब हैं, आप ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं और प्रकृति के तत्वों से उनका रोजाना का नाता है। जल संरक्षण के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब
1: जी। तो ये जो संवेदनशीलता का मामला है प्रकृति के घटकों के प्रति, उसमें पानी भी एक है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है पानी, तो इसलिए आज हम पानी को लेकर के बात कर रहे हैं। हर घटक महत्वपूर्ण है, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पानी के संरक्षण के प्रति आज कहीं ये भाव दिखाई नहीं देता, उसकी बर्बादी ज्यादा दिखाई देती है। तो ये जो संवेदनशीलता है वो क्यों कम हो रही है, लोग क्यों इसके प्रति जागरूक नहीं है, जबकि उसके बिना तो हम जीवन की संभावना भी नहीं दे सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते।
2: बिल्कुल सही कहा सिंह साहब
1: जी।
2: जीवन की जो सृष्टि हुई है वो जल से ही हुई है ऐसा माना जाता है। जो पांच तत्वों से हमारा जो शरीर बना है उनमें जल सबसे महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में कहा भी है कि क्षत जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और इन पांचों तत्वों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो जल ही है। आज इतने महत्वपूर्ण तत्व के बारे में जो आज समाज के अंदर जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। आजकल हम देख रहे हैं जब भी गर्मियां आती हैं तो पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। पूरे देश की बात करें तो बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े राजधानियां आज पानी के लिए हाहाकार यानी वहां पर मचा हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही बंगलोर के बारे में आया है कि बंगलोर के अंदर पानी भूजल जो है समाप्त हो गया है। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति,
1: जबकि बेंगलोर की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है वो देखा है कि वहां उसको झीलों का शहर ही कहा जाता है, उसके आसपास

0: बेंगलोर के आसपास प्राकृतिक तौर पे सैकड़ों कभी झीलें हुआ करती थी,
1: जी
0: और यही कारण है कि शायद आज वो नहीं रही होंगी, तो भूजल भी चला गया, और वहां जब भी पानी बरसता है तो बेंगलोर में जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, शायद उसका भी कारण यही है
1: जी
0: कि वो प्राकृतिक जो पानी के आवास थे वो खत्म हो गए।
1: बिल्कुल। आज स्थिति वहां ये बताई जा रही है, रोजाना समाचार पत्रों के माध्यम से भी आता है, कि वहां सरकार 200 किलोमीटर दूर बोरवेल करने की सोच रही है, वहां
0: जहां
1: पर
0: वाटर लेवल
1: जहां
0: है।
1: लेवल है,
0: हाँ
1: क्योंकि वहां पानी जमीन के अंदर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ये इन सब चीजों पर जब हम चर्चा करते हैं किसी भी शहर के बारे में, किसी भी गांव के बारे में, तो हम मुख्य रूप से एक बात या एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वहां पर, बंगलोर की अगर बात हम करें, तो वहां पर कभी जितनी भी बहुमंजिला इमारतें हैं, उस हर बहुमंजिला इमारत के अंदर बहुत बड़े बड़े बोरवेल हुआ करते थे, जिसका कि खामियाजा आज बंगलोर को और दिल्ली जैसे अन्य शहरों को भोगना पड़ रहा
0: बड़ी
1: है।
0: आबादी वाले जो शहर है। मथुरा की भी जब हम बात करते हैं, स्थिति आ रही है, तो मथुरा में भी जहाँ 10 ब्लॉक है, 4-5 तहसीलें हैं, वहां भी
1: जी
0: कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भूगर्भ जल स्तर का जो ब्रज का जो फेनोमेना है वो भी
1: जी
0: बहुत नीचे ही जा रहा है, और
1: बिल्कुल
0: दिनों दिन जा रहा है, वर्षा कम होती जा रही है, दोहन ज्यादा हो रहा है, तो पानी तो फिर नीचे जाएगा ही जाएगा। तो इस पे कोई तथ्य है आपके पास?
1: बिल्कुल। मथुरा जिला जैसा कि सिंह साहब आगरा मंडल के अंदर आता है, और केवल मथुरा ही नहीं, मेरा जो मूल जो रहा है आगरा मंडल ही रहा है पानी के
0: जी जी
1: स्रोत पर। पूरा आगरा मंडल के अंदर जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें आगरा है, मथुरा है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, इन सब की, चारों ही जिलों की स्थिति बड़ी दयनीय है। और इनमें मथुरा एक ऐसा जिला है जहां पर अधिकांश जो भाग है, जहां का लगभग 40% जो भाग है वो खारी पानी का है। 10 ब्लॉकों की जो हम बात कर रहे थे, इनमें सबसे अधिक जो दयनीय स्थिति है आज नंदगांव ब्लॉक की है, जहां पर अधिकांश जो भूजल है वो खारी है।
0: खा दिए।
1: इसके अलावा गोवर्धन है, यहां पर भी लगभग 60% खारी पानी है। फरे में भी 60% खारी पानी है, मथुरा में 50% खारी पानी है, छाता में 25% है। इस तरह से देखा जाए तो इन सभी ब्लॉकों में खारी पानी की जो समस्या है वो मुख्य है।
0: अच्छा, जमुना जैसी सदाबहार और वर्ष भर बहने वाली नदी हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारे मंडल से होके गुजर रही है। भाई आगरा की आपने
1: जी
0: बात की, तो उसमें मथुरा भी, आगरा भी, इन सब शहरों को टच करती हुई जा रही है।
1: बिल्कुल
0: तो क्या कारण है कि हम अपने जल स्रोतों को संभाल नहीं पाए? पहले चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव हो, बड़े गांव के चारों तरफ तालाब और पोखरें हुआ करती थी, छोटा ढाणी या नगला है तो उसके एक दो तरफ होती थी, लेकिन ऐसा कोई गांव या ढाणी नहीं होती थी जहां तालाब नहीं हो, कुएं नहीं हो, प्रकृति का बारिश का पानी एक बार ठहर के तब कहीं नाले में जाता था, लेकिन एक बार गांव के आसपास वो ठहरता था, उससे वो रिचार्ज हो जाते थे जल स्रोत हमारे। तो वो धीरे धीरे कहाँ आ गए? इंक्रोचमेंट पे चले गए, लोगों ने उसके प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई, लोगों ने जागरूकता नहीं दिखाई, हम कहीं अपने अपने जो हमारे उत्तरदायित्व थे प्रकृति को संरक्षित करने के, उससे कहीं दूर हो गए।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि इसमें जैसे कि ये जो हमारे जितने भी जल स्रोत हैं, पारंपरिक जल स्रोत जिनको कहते हैं, वो जल स्रोत कहीं गुम हो गए हैं। उसका मैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो कारण समझता हूं, जिस पर चर्चा बहुत कम हो पा रही है, उसमें है जैसे सरकार का एक भूमि सुधार कार्यक्रम है। भूमि सुधार कार्यक्रम में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, गरीब लोगों के पट्टे भी होते हैं गांव समाज में, अन्य चीजें भी होती हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की यानी समस्याएं हैं कि पट्टे काटते समय जहां पर जो ढलान वाली जो जमीन है, जहां पर गांव का पानी जहां जाकर के तालाब में इकट्ठा हुआ करता था, ऐसा भी देखा गया है कि वहां पर ये तालाब में जहां पानी इकट्ठा होता था, तो वहां पर मुख्य रूप से ऐसी स्थिति देखी गई कि वहां पट्टे काट दिए गए। जब वहां पट्टे काट दिए गए, यहां अनदेखी हुई एक तरह से, तो ये देखा ही नहीं गया कि वहां तालाब वहां पहले हुआ करता था या वहां पानी इकट्ठा होता था। गर्मी के दिनों में जब पानी सूख गया तो बिना देखे हुए वहां पर गरीब लोगों के पट्टे काट दिए गए। अब इस तरह से जो एनक्रोचमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो इस वजह से भी
0: जी,
1: वहां पर
0: मतलब हमने एक जरूरत को पूरा करने के लिए उससे बड़ी जरूरत को नजरअंदाज कर दिया,
1: नजरअंदाज कर दिया।
0: और जब समय आया तो शायद फिर न जरूरत ये पूरी हुई न वो हुई, उसमें तो हम कहीं चूक रहे हैं अपनी प्लानिंग में, अपने विकास की
1: बिल्कुल
0: दौड़ में जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं एक दूसरे के विरोधाभासी काम हो रहे हैं इसमें।
1: बिल्कुल
0: अब टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीकी युग है,

0: चीजें आ रही हैं उसमें। अब समरसेबल आ गया, पहले हम भाई उससे रस्सी बाल्टी से पानी पीते थे, फिर हैंडपंप आ गया तो उससे, लेकिन मेहनत होती थी, दो बाल्टी का जो काम था हम कई बार एक से ही कर लेते थे, लेकिन अब समरसेबल चल रहा है चला के भूल जाते हैं। तो अतिरिक्त का जो दोहन है चीजों का जो प्रकृति के अंदर है, तो ये भी तो संवेदनशीलता को दिखाता है। वहां भी हम नजरअंदाज कर रहे हैं कि विकास तो हमने कर लिया, चलो ठीक है अच्छा है भाई, नीचे पानी है उसको खींच लेंगे, सबको एक बड़े समुदाय को दे देंगे, लेकिन अब तो घर घर में समरसेबल लग रहा है, ये चीज फिर कहीं उसमें बाधक हो रही है।
1: बिल्कुल, ये चीज भी बाधक है जल संरक्षण के अंदर, क्योंकि आज वास्तविकता क्या है सिंह साहब कि लोगों की जो सोच है वो सोच क्या है जल के बारे में, कि ये जल जो है मुफ्त की चीज है,
0: मुफ्त की चीज है,
1: और मुफ्त की वजह से ही हम इसके प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं बन पा रहे हैं,
0: क्योंकि मुफ्त में हमें प्रकृति ने दिया है,
1: प्रकृति ने दिया है,
0: क्योंकि सबके लिए आवश्यक है भाई, इसमें अमीर गरीबी की कोई बात नहीं है, तो उन्होंने तो प्रकृति ने तो इतना लौटा दिया, लेकिन हम कहीं उसके भाव में चूक कर रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि ये मिल रहा है इफरात में तो मुफ्त है, तो इसके प्रति हमारी कोई जवाबदेही नहीं,
1: जवाबदेही नहीं,
0: इस भाव से हम बच रहे हैं
1: जी,
0: ये आप कहना चाह रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कहां से शुरुआत होगी फिर, कहीं से तो शुरुआत होगी,
1: इसकी शुरुआत केवल जो हो सकती है वो जल आंदोलन, जैसे विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं देश के अंदर, एक जल आंदोलन इस तरह का होना चाहिए जिससे कि लोगों की जो सोच है वो बदले, जब तक चाहे सरकार कितना भी प्रयास कर ले
0: जी, जी, जी।
1: जब तक जन सहभागिता इस कार्यक्रम में नहीं होगी जब तक जल का संरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि आज पूरे दुनिया के अंदर बात हो रही है 3 R की, जिसमें एक कहा जाता है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। तो उसमें कहा गया है कि रिड्यूस का मतलब जल का समुचित उपयोग करें, अनावश्यक उसका यूज न करें, रिसाइकल में यानी उसको रिसाइकल हम करें, पानी को
0: दोबारा से उपयोगी बनाएं,
1: और रीयूज उसी पानी को हम यूज करें बार बार उसको,
0: तो एक वाटर साइकिल
1: बन जाए,
0: जैसे प्रकृति का है कि बाष्प बन के उड़ेगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी, फिर उसको संरक्षित कर लीजिए, तो ऐसे ही हमें अपने प्रकृति जैसे संरक्षित करती है, तो आदमी को भी ये साइकिल और ये चक्र है इसका, उसको करना पड़ेगा, उसमें व्यवहार में लाना पड़ेगा, और वो बात एक विचार से और सोच से ही पैदा होगी, जिसको व्यक्ति को मिल करके एक संगठन बनाना होगा, आंदोलन बनाना होगा, और घर घर में इस विचार को लेके जाना होगा कि बिना पानी के संरक्षण के शायद जीवन संभव नहीं है, और जीवन जीना और समाज को बचाना है तो फिर हमको इसको करना ही पड़ेगा, कॉस्ट हमारी चाहे कोई भी आए। कुछ और कहना चाहेंगे इसमें?
1: बिल्कुल, दूसरा ये है कि जल का जो हम खास करके घरेलू जो उपयोग करते हैं, घरेलू उपयोग के अंतर्गत यानी पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि सबसे अधिक जो जल की आवश्यकता होती है वो हमको कृषि में और उद्योगों में आवश्यकता होती है। तो दूसरा यह है कि उद्योगों में जो पानी हम प्रयोग करते हैं उसकी भी व्यवस्था करनी होगी, कृषि में भी हमको अपने कृषि जो पैटर्न है, कृषि प्रणाली है, उसको बदलना होगा, सिंचाई प्रणाली को बदलना होगा। इन सब पर जब हम नजर डालते हैं तो हम वहीं पहुंचते हैं कि जो हमारी पुरानी जो परंपरा थी,
0: तकनीकी थी
1: पानी की, वो कहीं ना कहीं खो गई है, हमको पुरानी उसी तकनीकी को लेकर के और नई तकनीकी जोड़ करके हमको सामंजस्य बैठाना होगा, तभी हम पानी की समस्या से निजात पा सकते हैं।
0: पुराना ज्ञान और आधुनिक तकनीकी का सम्मेलन करके कुछ ऐसे व्यावहारिक तरीके हम लेकर के आए जिससे हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए और जो वातावरण और प्रकृति के संरक्षण की बात है उसको भी कहीं हम धरोहर के रूप में संजो करके रख सकें। डॉक्टर साहब आप आए और जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए, इस पानी के संरक्षण के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता बनती है, विचार और बात तो बहुत लंबी हो सकती है लेकिन समय थोड़ा कम है, लेकिन बहुत उपयोगी बातें आपने बताई, अगर व्यक्ति इस पर अमल करेगा तो कुछ शायद अच्छा हम कर पाए। आपका धन्यवाद।
2: आपसे मिलिए क्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बातचीत पानी के उपयोग से जुड़ी हमारी संवेदनशीलता, डॉक्टर राजवीर सिंह से भेंट कर रहे थे ओपी सिंह, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल, आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
1: काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में सर्वाधिक दिनों तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर वाराणसी में उत्सव का माहौल रहा। इस मौके पर वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। सर्वाधिक समय तक जनता द्वारा चुने गए जननायक के रूप में उनका यह कार्यकाल हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर नगर निगम द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी का आंदोलन बनाकर देश में स्वच्छता के प्रति नई चेतना पैदा की है। प्रधानमंत्री के सबसे अधिक दिनों तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने बताया कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिग्रा में स्थापित किए जा रहे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का लाभ भी इस वर्ष से खिलाड़ियों को मिलने लगेगा, जिससे वाराणसी और पूर्वांचल के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा, जिससे खेल वातावरण को नई ऊर्जा मिलेगी। वाराणसी में 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में शामिल हुए। बैठक में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधियों ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत से गहराई से प्रभावित नजर आए। भ्रमण के दौरान अतिथियों ने मूल गणकुटी विहार, धम्मिक स्तूप तथा अन्य ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। सारनाथ की शांत एवं आध्यात्मिक वातावरण ने विदेशी मेहमानों को विशेष रूप से आकर्षित किया। प्रतिनिधियों ने यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से जाना। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना था।
2: ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है, और कल्चर के अगर लोगों को हम अपना कल्चर जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
1: प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश 4 में से 3 श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रहा है। वाराणसी में आयोजित समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में वाराणसी देश में 11वें स्थान पर है और इसे प्रथम स्थान पर पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में वाराणसी इस योजना में और बेहतर प्रदर्शन करेगा। बैठक में सौर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया। हनुमंत रिन्यूएबल द्वारा सोलर दीदी और सोलर सखी पहल के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की सराहना की गई। कंपनी द्वारा महिलाओं को 14,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया है। वहीं यूपी नेडा और डूडा ने प्रत्येक सोलर इंस्टॉलेशन पर सोलर दीदियों को अतिरिक्त 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना न केवल लोगों के बिजली के बिल को कम कर रही है, बल्कि अतिरिक्त बिजली

0: उत्पादन के माध्यम से आय का स्रोत भी बन रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और उनके बिजली खर्च में भी उल्लेखनीय कमी आई है। बिजली आपूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 20 से 21 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। आंधी और तूफान के कारण कहीं तार टूटने जैसी समस्या आती है, लेकिन विभाग की टीमें तत्काल मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटी रहती।
1: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख है आजाद नोमानी का।
2: मऊ जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों जनपद के मधुबन की ऐतिहासिक और शहीदी धरती पर विकास की एक नई इबारत लिखी। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित एक विशाल जनसभा में 392 करोड़ से अधिक लागत की 114 जनकल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री

0: कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, डेमो चेक, डेमो चाबी का वितरण भी किया गया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन तथा गोद भराई एवं अन्नप्राशन का कार्य भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मऊ के गौरवशाली इतिहास को याद किया। जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की ताकत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जब आप अच्छे लोग चुनकर भेजते हैं तो एक अच्छी सरकार बनती है, और जब अच्छी सरकार आती है तो अपने साथ बिना किसी भेदभाव के विकास लेकर आती है। उन्होंने कहा कि जब एक सड़क, अस्पताल, पुल या बाल सुरक्षा का काम होता है तो किसी भी जात को पूछकर लाभ नहीं देता। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिना किसी सिफारिश के उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की गारंटी मिली हुई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत यदि किसी इंसान या बटाईदार के साथ कोई अनहोनी होती है तो सरकार के जनप्रतिनिधि मात्र 24 घंटे के भीतर पीड़ित परिवार के घर जाकर 5 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपते हैं। श्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि
1: आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को तो हमने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है और निरंतर उसमें वृद्धि की जा रही है। हर गरीब को ये सुविधा मिलेगी।
0: कार्यक्रम के बाद श्री योगी ने ताजोपुर स्थित ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए देश के वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और ग्रामीण जनता के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मऊ जिले के प्रभारी एवं प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार की उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर उन्हें आमजन तक पहुंचाना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2029 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिनके मार्गदर्शन में विकास एवं सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तिथिवार समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और सम्मान की भावना के अनुरूप सभी कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। बैठक में जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि सभी कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विभागवार जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों के व्यापक प्रचार प्रसार की कार्य योजना तैयार कर ली गई है और सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। मऊ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में संचालित एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने अपने आवास और वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत चयनित मुख्य कार्यक्रम स्थल बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में पौधारोपण कर जनपदवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वृक्ष न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य की आधारशिला भी है। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला सैनिक बंधु की बैठक हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पूर्व सैनिकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी पूर्व सैनिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने कुशमौर स्थित अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो का भ्रमण कर संस्थान द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न शोध कार्यों, जैव प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों और किसानों के लिए विकसित की जा रही उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। कार्यक्रम में आज वार्ता का विषय है ट्यूबवेल की बढ़ती संख्या और जल संकट। वाचन कर रहे हैं।

0: scen.
1: लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध शुद्ध पेयजल की आपूर्ति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस समस्या की जड़ क्या है और कहाँ है? यूं तो पृथ्वी के अंदर जल का भंडार अक्षय अर्थात रिन्यूएबल है। वर्षा का जल तथा सतही जल पृथ्वी की अनेक परतों से रिसकर सतह के नीचे शुद्ध जल के रूप में एकत्रित होता रहता है, परंतु सतह के नीचे जल भंडारण की भी एक क्षमता होती है। अतः इसका उपयोग हमें बहुत सावधानी पूर्वक एवं सूझबूझ से करना चाहिए। आज से कुछ वर्ष पूर्व शुद्ध जल प्राप्त करने का साधन तालाब, नदी, नहर, पोखर आदि थे, जो वर्षा ऋतु में शुद्ध जल से भर जाते थे, एवं जहाँ ये सुविधा नहीं थी वहाँ लोग कुएं से पानी निकालकर उपयोग में लेते थे। कुएं से पानी निकालना श्रम साध्य था, इसीलिए लोग बहुत सीमित जल की मात्रा में अपने सारे कार्य कर लेते थे। नगरों एवं शहरों में पानी का वितरण नगर पालिका द्वारा पाइपलाइन के माध्यम से होता था, जिसमें क्षेत्र के आधार पर जल की मात्रा पर उनका नियंत्रण था। परंतु आज परिस्थिति पूरी तरह बदल गई है। आज जगह जगह हैंडपंप, ट्यूबवेल एवं बोरवेल द्वारा पानी निकाला जा रहा है, क्योंकि ट्यूबवेल एवं बोरवेल से बिना किसी परिश्रम के जल प्राप्त हो रहा है, इसीलिए लोग जल के व्यर्थ फैलने की चिंता भी नहीं करते। इस प्रकार ट्यूबवेल द्वारा अत्यधिक मात्रा में शुद्ध पेयजल का दुरुपयोग हो रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं शहरीकरण के चलते नई नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, जहां पेयजल की आपूर्ति नगर पालिका के माध्यम से नहीं होती। हर घर में ट्यूबवेल, बोरवेल, पंप लगे हैं। ये पंप बहुत अधिक मात्रा में पानी को पृथ्वी के अंदर से निकाल देते हैं, जिससे भूमिगत जल की सतह का स्तर लगातार घटता जा रहा है। यदि हम लोग समय रहते नहीं जागे तो इसके दुष्परिणाम हमारी भावी पीढ़ी को भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है एवं जल है तो कल है। इन्हीं उक्तियों पर ध्यान देते हुए हमें इस अक्षय संपदा की रक्षा हेतु कुछ कदम उठाने होंगे, अन्यथा परिणाम सहने के लिए तैयार रहना होगा। अब प्रश्न ये है कि गिरते हुए जलस्तर में सुधार कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है और जरूरत है प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की। ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक नीचे गिर रहा है, वहां पर आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कृत्रिम भूजल पुनर्भरण बनाए जाए। जगह जगह तालाब, पोखर आदि बनाए जाए, जिससे भूमिगत जल के स्तर में सुधार हो सके। शहरों तथा नगरों में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा नहीं मिलता जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा सके, तो वहां पर वर्षा के जल का संचयन कर इमारतों में भूजल घर बनाकर वहां पानी का संग्रह कर सकते हैं। शहर में कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए कि वर्षा जल का सारा पानी एकत्र कर कुछ नई वाटर बॉडीज बनाई जाए, जो जल संग्रहण के साथ ही भूजल स्तर को सुधारने में भी मददगार हों। जितने भी नए भवन बन रहे हैं उनमें वर्षा जल संचय प्रणाली अनिवार्य कर दी जाए, जिससे इसको पुनः पुनः उपयोग में लिया जा सके। प्रत्येक भवन की योजना इस प्रकार हो, उसमें कम से कम 40% भाग जमीनी हो, जिससे वर्षा का जल धरती की सतह से रिसकर अंदर जा सके एवं भूमिगत जल का स्तर सही बना रहे। कारखानों एवं सीवेज का पानी शुद्ध करके ही नदियों में गिराया जाए, जिससे नदियों का जल स्वच्छ एवं साफ बना रहे और उसे कृषि के उपयोग में लिया जा सके।

आबोहवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता, ट्यूबवेल की बढ़ती संख्या और जल संकट। वाचन कर रहे थे मनीष जैन। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति दे रही हैं सुरभि शर्मा।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका करते हैं आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार। इस कार्यक्रम में न केवल दी जाती है आपको सही और सटीक जानकारी, करवाया जाता है प्यारे प्यारे गीतों से का मनोरंजन भी। श्रोताओं, आज है विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, यानी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। हर साल 13 जून को ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के अधिकारों का सम्मान करना और इस अनुवांशिक स्थिति के बारे में समाज की जागरूकता की समझ को बढ़ाना है। एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता, ये एक दुर्लभ जन्मजात अनुवांशिक बीमारी है। इसमें शरीर में मेलानिन नामक रंजक नहीं बन पाता। इसके प्रभाव से त्वचा, बाल और आँखों का रंग बहुत हल्का या सफ़ेद हो जाता है। त्वचा में रंग की कमी से धूप में रहने पर त्वचा के कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन और टोपी का उपयोग करना चाहिए। आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है और उन्हें धूप से परेशानी होती है। इस स्थिति का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सावधानी से आप अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। ये दिवस क्यों महत्वपूर्ण है, अब ये सवाल उठता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उनके सामाजिक समावेशन और समानता को बढ़ावा देने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। समाज में उनके प्रति जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो मिसकंसेप्शन फैले हुए हैं, उनको भी दूर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस बीमारी से ग्रसित लोगों को मुख्यधारा में लाया जाए, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, क्योंकि ये अनुवांशिक बीमारी है जो किसी के हाथ में नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो उसका त्याग ना करें, उसे समाज की मुख्यधारा में साथ लेकर ही आगे बढ़ें।

0: बताऊं, जैसे कि आप जानते हैं कि 14 जून का दिन मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्या ये दिन और इस दिन क्या खास बात है, इन्हीं सारे विषय को लेकर हमने बातचीत करी हमारे साथ में।
1: मैं डॉक्टर ऋतु रंजन हूँ, जिला चिकित्सालय मथुरा में ब्लड स्कीम प्रभारी हूँ। और आप सभी, आपको नमस्कार और आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार।
0: 14 दिन का दिन मानवता के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्या खास बात है 14 जून को?
1: 14 जून को हर साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, और इस दिन रक्तदाताओं को के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि रक्तदाता रक्त देते हैं और रक्त से बड़ा कोई और दान नहीं होता।
0: इस दिन को मनाने का मूल वजह क्या है?
1: इस दिन को मनाने की, एक तो ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि ये कार्ल लैंडसीनर जी थे, जो कि जिन्होंने ए आपने ब्लड ग्रुप सुने होंगे, ए बी ए बी ओ, जिसको एबीओ सिस्टम कहा जाता है, उसका उन्होंने आविष्कार किया था। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए इस दिन को चुना गया। पर इस दिन को मनाया इसलिए जाता है क्योंकि विश्व भर में जो रक्तदाता होते हैं वो रक्त देते हैं, और उनके रक्त की वजह से ही बहुत से मरीजों का जीवन बचता है, और इसलिए इस दिन ये दिवस मनाया जाता है ताकि इस दिन हम रक्तदाताओं को सम्मान दे सकें।
0: कहते हैं ना कि खून हमारे जिसमें बहता है और खून की वजह से हम जिंदा हैं, एक मामूली
1: जी
0: सी बात है खून, लेकिन इतना बड़ा विषय है ये रक्तदान, रक्तदाता दिवस, ऐसा क्यों?
1: इसलिए क्योंकि एक, आप जैसे आपने कहा ना कि जैसे एक कोट है आप कि आप समंदर की एक बूंद नहीं है, आप आपकी एक बूंद में पूरा समंदर है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो आप रक्त देते हैं ना, उसकी एक एक बूंद इतनी ज्यादा कीमती होती है। कभी कभी जो एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं, जो प्रसव पीड़ा वाली महिलाएं होती हैं, या बच्चे होते हैं जिनको थैलेसीमिया होता है, या अज्ञात लोग होते हैं जिनके अंदर खून की कमी हो जाती है, जो सड़कों पर पड़े हुए मिलते हैं, उनका जीवन इस रक्त की वजह से बच जाता है, जो आप बस ऐसे ही अपने बॉडी से निकाल के दे देते हैं। तो इसलिए ये रक्तदान इसलिए ही इतना बड़ा माना गया है। कोई और मशीन ऐसी नहीं है जो रक्त बना सके किसी और तरह से, जो रक्त की कमी होती है वो सिर्फ रक्त ही पूरा कर सकता है, इसलिए रक्तदान इतना इम्पोर्टेंट है। जी
0: रक्तदान महादान ऐसा कहा जाता है, लेकिन रक्तदान को लेकर लोगों के मन में कई तरह के मिथ हैं, भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं
1: जी
0: कि अगर हम अपना रक्तदान करेंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी। कुछ पेरेंट्स भी अपने यंग बच्चों को ऐसा करने से

0: हैं।
1: जी, ऐसा हुआ है जो
0: ऐसा क्यों?
1: कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे जी हमारे ब्लड बॉडी में जो ब्लड होता है ना, वो हर अपने आप ही वो नए रक्त रक्त सेल्स बनते हैं और फिर उसके बाद वो डिस्पोज भी होते हैं। वो साइकिल वैसे ही 90 दिन की होती है। तो अगर आप रक्त नहीं भी देंगे तो भी वो आपके जो बॉडी में रक्त है, जो ब्लड सेल्स हैं, वो वैसे भी बेकार जाएंगे। और अगर आपने ब्लड दिया तो और आपका सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है और वो रक्त बनाने की और अच्छा नया रक्त बनाता है, और समझ लीजिए हफ्ते भर में नया रक्त बन जाता है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम रक्त दे देंगे, ब्लड डोनेट कर देंगे, तो हमारे अंदर से ब्लड चला जाएगा और उसकी वजह से हमें कमजोरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर से जो ब्लड गया है वो और नए ब्लड सेल्स को बनाने के लिए आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलस देता है। आप जो ब्लड देते हैं तो आपकी बॉडी नए सेल्स प्रोड्यूस करती है, वो फ्रेश सेल्स होते हैं, और उसकी वजह से वो आप उनके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। वो आपको सारी अच्छी एनर्जी देंगे जो पुराने सेल्स नहीं दे रहे थे। इस भ्रांति को दूर करना बहुत जरूरी है।
0: क्या हर व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, गर्भवती महिलाएं हो, कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है?
1: नहीं, 18 वर्ष से ऊपर का और 65 वर्ष से तक के व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। वो ओवरऑल स्वस्थ होना चाहिए, उसके अंदर कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे हार्ट की बीमारी, या फिर इंसुलिन नहीं लेता हो, डायबिटीज हो तो दवाइयों से कंट्रोल्ड हो, या उससे कोई लिवर की बीमारी ना रही हो कभी। इस तरह के बहुत से सवाल होते हैं। जब कोई रक्तदाता आता है हमारे पास, तो हम उसके उसके सामने हम पूरी उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसको असेस करते हैं, उसकी बॉडी को खून की जांच करते हैं, और तब हम उससे रक्त लेते हैं।
0: क्या हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में, जिला अस्पताल में, जो अगर किसी मरीज को रक्त की जरूरत है, क्या वो सब चीजें निःशुल्क मिलती हैं?
1: बिल्कुल, अगर सरकारी अस्पताल में, किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई मरीज भर्ती है तो उसको रक्त हमेशा निःशुल्क मिलेगा।
0: रक्तदान महादान कहा जाता है, लेकिन फिर भी आज के समय में लोगों में रक्तदान को लेकर उतनी जागरूकता नहीं आई है जितनी होनी चाहिए। क्या शासन प्रशासन के द्वारा जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं?
1: समय समय पर प्रयास किए जाते हैं, जिसमें आप लोग और मीडिया हम लोग की हमेशा सहायता करते हैं। पर कहते हैं ना, कुछ भ्रांतियां बस चली चली जा रही हैं, उनको हम नहीं रोक पा रहे। पुरानी ओल्ड वाइफ टेल जिसे कहते हैं, कुछ माओ की ममता होती है, पिताओं का प्यार होता है, जो बच्चों को आगे ब्लड डोनेट करने से रोकते हैं। उन सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों से वो पुण्य करवा रहे हैं, अगर आप ब्लड डोनेट करने के लिए कहेंगे, जो अदरवाइज उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। जब पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, बिना पैसे खर्च किए वाला पुण्य है ये। तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगी कि ऐसी कोई भ्रांतियां ना पाले। सरकार की तरफ से समय समय पर अवेयरनेस की जाती है और कैंपेन चलाए जाते हैं। हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, वहां पे बच्चों को भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं और बच्चे अच्छे मोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए मुझे यंग जनरेशन से बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि
0: जी,
1: वो आगे आएंगे और रक्तदान करेंगे।
0: ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं?
1: ब्लड ग्रुप मोटे मोटे समझ लीजिए 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें 4 पॉजिटिव ग्रुप कहलाते हैं और 4 नेगेटिव ग्रुप कहलाते हैं। जैसे कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इसके अलावा कुछ माइनर ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं जो कि बहुत आसानी से डिटेक्ट नहीं होते। इसीलिए जब भी किसी को खून चढ़ाना होता है, तो जिस मरीज को खून चढ़ाया जाता है उसका सैंपल लिया जाता है, और जो ब्लड उसको चढ़ाया जा रहा है उसका उसका सैंपल लिया जाता है। दोनों को आपस में टेस्ट करके, क्रॉस मैच करके देखा जाता है कि कहीं कोई माइनर ब्लड ग्रुप तो नहीं आ गया जिसकी वजह से कोई रिएक्शन हो जाए। और अगर वो रिएक्शन नहीं होता है, टेस्ट पास होता है, तभी उसको उनको चढ़ाया जाता है।
0: कुछ लोग ऐसा मानना होता है कि घर परिवार के लोगों का ही ब्लड ग्रुप मैच करता है, बाहर वाले लोगों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। क्या ये सही है या गलत?
1: देखिए, अभी मैंने बताया 8 मेजर ब्लड ग्रुप होते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक परिवार में, 4 लोगों के परिवार में 8 ब्लड ग्रुप आ जाए। तो वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। या फिर सिर्फ आठ जो 8 ग्रुप हैं, पूरा विश्व उन्हीं ग्रुप के परिवारों में, मतलब वो ग्रुप एक ही परिवार में हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो परिवार से कोई मतलब नहीं होता। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, अगर वो मैच कर रहा है और उसके टेस्टिंग हम लोग करते हैं, एक बार अगर हम किसी कोई रक्तदान करता है, हमारे पास जो रक्त की थैली में रक्त आता है उसकी टेस्टिंग की जाती है कि कोई बीमारी तो नहीं है ऐसी कि खून से वो ट्रांसमिट हो सके।

0: हो जाता है, तो वो चाहे वो परिवार का हो या परिवार का ना हो, वो रक्त चढ़ाया जा सकता है।
1: सरकारी ब्लड बैंक के अलावा काफी प्राइवेट ब्लड बैंक भी खुल चुके हैं, क्या उनके लिए
0: जी
1: भी वही मानक निर्धारित है जो सरकारी बैंक के लिए हैं, कि वहां पर भी उसी तरह ब्लड की टेस्टिंग होती है तभी ब्लड लिया जाता है, पूरी तरीके से जो जांच प्रक्रिया है पूरी तरीके से प्रक्रिया पारदर्शी होती है?
0: देखिए, उनके लिए भी मानक तो वही है, पारदर्शी है, पारदर्शी भी होती है, क्योंकि एक पोर्टल होता है जिसमें ये सारे उन्हें अपनी टेस्टिंग चढ़ानी होती है, तो वो भी हम भी चढ़ाते हैं उस पोर्टल पे और वो भी चढ़ाते हैं प्राइवेट रक्तकोष भी।
1: अगर किसी व्यक्ति को अपने किसी प्रियजन के लिए रक्त की आवश्यकता है तो जिला अस्पताल
0: जी
1: जाकर या कहीं जाकर उसे क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? क्या फॉर्म फिल करना पड़ेगा, राशन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, क्या पेपर फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती
0: नहीं
1: है?
0: नहीं उसको ये सारी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। एक तो ई रक्तकोष पोर्टल पर आपको जितने भी जिले में जितने भी ब्लड बैंक होंगे उनकी आपको अवेलेबिलिटी दिख जाएगी कि कौन सा रक्त किस ब्लड बैंक में अवेलेबल है। उसके बाद आपको सिर्फ मरीज का सैंपल चाहिए, और जिस जहाँ आगे से अस्पताल में आपका मरीज भर्ती है वहां पर जो डॉक्टर है उनकी रिक्वेस्टेशन जिसे कहते हैं, कि वो पर्चे पे जो लिख करके देते हैं कि इस मरीज के लिए ब्लड चाहिए, आपको सिर्फ ये दो चीजें चाहिए और कोई आधार पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। अब नया वो आ गया जिसमें अब आभा आईडी आईडी वगैरह बनता है, तो आधार अगर आपके पास फोटो भी है उसकी तो भी काम चल जाएगा।
1: शासन प्रशासन की पहल पर कुछ स्कूलों में कॉलेजों में कुछ फॉर्म फिल करते समय ब्लड ग्रुप मांगा जाता है, क्या ये प्रक्रिया
0: जी
1: सही है?
0: सही है, वो तो कॉलेज वाले इस हिसाब से शायद लेते होंगे कि उनके पास उनका पूरा डेटा तैयार रहे, कि कभी किसी मरीज को, कि कभी किसी बच्चे को अचानक से जरूरत पड़े तो हो सकता है ये प्रक्रिया होती हो, ये दिमाग में उनके रहता हो, इस वजह से सकते हो। कॉलेज और स्कूल के प्रशासन की तरफ से तो मैं आपको नहीं बता सकती, पर हर किसी को अपना ब्लड ग्रुप पता होना
1: हम कह
0: चाहिए।
1: सकते हैं कि ये एक पहल जो है वो अच्छी सोच की अच्छी दिशा के लिए है।
0: बिल्कुल, सबको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, इतनी अवेयरनेस इतनी जागरूकता हम सब में होनी चाहिए कि हमारा क्या ब्लड ग्रुप है। और अगर आपके रेयर ब्लड ग्रुप में से कुछ है, अगर आप निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप में आते हैं या एबी पॉजिटिव आपका ब्लड ग्रुप है जो कि थोड़ा कम पाया जाता है लोगों में, तो आप आगे बढ़ बढ़ कर आपको पता होगा कि जिस समय रक्त की कमी पड़ रही है कि मैं ये ब्लड जाकर डोनेट कर लूँ, किसी मरीज की जान बच सकती है।
1: जी, अगर कोई अच्छे कार्य करता है उसको कुछ पुरस्कार दिया जाता है तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है और आगे के लिए भी अच्छा कार्य करने के लिए भी प्रेरित होता है। रक्तदान महादान
0: जी
1: कहा जाता है, फिर भी लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, जो रक्तदान करने व्यक्ति आते हैं क्या उनको कुछ पुरस्कार दिया जाता है या उनको प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार उपाय अपनाए जाते हैं?
0: जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं उनके लिए तो ये दिवस है ही कि रक्तदाता दिवस जो है उस दिन हम सम्मानित करते हैं उन्हें, जो रेगुलर तरीके से अपना ब्लड डोनेट करते हैं। और जो कभी कभी डोनेट करने वाले लोग भी हैं जो पहली बार भी आते हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए हम उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं और अन्य पुरस्कार देते हैं।
1: इस बार की जो थीम निर्धारित की गई है, मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें
0: जी
1: जीवन बचाएं, इस क्या अभिप्राय?
0: जी ये मैंने आपको शुरू में आपको एक कोट बताया था कि आप ये समझ लीजिए कि रक्त एक मानवता की एक बूंद नहीं, आप एक बूंद में ही पूरी मानवता है। आप अगर आप सिर्फ रक्तदान की एक बूंद भी देते हैं ना, तो वही आप मानवता का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। मानवता की एक बूंद तो है ही कि आप अगर एक बूंद भी किसी को देंगे तो शायद उसकी जान बच सकती है, इसलिए आप बूंद जितना हो सके उतना आप हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं, तो साल में 4 बार रक्तदान आप करिए। अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं, कैसेट से कम है और आपका वजन ठीक है, आप अदरवाइज हेल्दी हैं, आप ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करिए हर 3 महीने में और जीवन बचाइए।
1: क्या कहना चाहेंगे सभी श्रोताओं से?
0: आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगी कि पहले तो आप अपने मन से ये भ्रांतियां हटा दें कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी होती है, बल्कि नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा मिलती है। और दूसरी बात, मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानकर आप आगे आइए और हर 3 महीने में रक्तदान करिए। आप लोगों की जान बचा रहे हैं, उनका जीवन बचा रहे हैं। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर खून की कमी होती है, लेकिन उनका ख्याल रखने वाला, उनके लिए रक्त देने वाला कोई नहीं होता। तो आप हर 3 महीने में आइए, रक्तदान करिए और उनका जीवन बचाइए।

अब डालते एक नजर आज के समाचारों पर। बढ़ते तापमान और झुलसा देने वाली गर्म हवाओं के चलते रिहाइड्रेशन, उल्टी दस्त, चक्कर, बुखार और कमजोरी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में प्रतिदिन 250 से 300 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने बताया कि तेज धूप, अत्यधिक पसीना और शरीर में पानी की कमी लोगों को बीमार बना रही है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कई मरीज उल्टी, दस्त, सिरदर्द, बेचैनी, चक्कर और अत्यधिक कमजोरी की शिकायत को लेकर पहुंच रहे हैं। महिला अस्पताल में बच्चों और गर्भवती महिलाओं में डिहाइड्रेशन और कमजोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश के मुताबिक शरीर में पानी की कमी, थकान, मुंह सूखना, चक्कर आना और ब्लड प्रेशर गिरने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इस दौरान लोगों को अधिक से अधिक पानी, नींबू पानी, छाछ, ORS आदि अनेक तरल पदार्थ को लेने के लिए कहा गया है। बदले बदले नजर आएंगे परिषदीय विद्यालय। 16 जून से खुलेंगे। BSA ने सफाई, पुताई व पेयजल व्यवस्था के निर्देश दिए। परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद 16 जून से कक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। इस बार स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को विद्यालय बदला बदला नजर आएगा। दीवारों पर रंगाई पुताई मिलेगी तो शौचालय स्वच्छ और साफ सुथरे मिलेंगे। पानी और अन्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त मिलेंगी जो बच्चों को विद्यालय नियमित आने के लिए आकर्षित करेंगी। परिषदीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल देने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति ने गाइडलाइंस जारी की है। उन्होंने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं स्कूल खुलने से पहले परिसर में पेयजल व्यवस्था, शौचालयों की सफाई व दीवारों की रंगाई पुताई कराना सुनिश्चित कराएं। BSA ने साफ किया कि किसी भी जर्जर या सुरक्षित भवन में कक्षाएं नहीं चलेंगी। ऐसे भवनों को चिन्हित कर उन पर लाल रंग से डेंजर खतरा लिखा जाएगा और उसकी रिपोर्ट फोटोसहित कार्यालय में भिजवाएं। स्कूलों की मुख्य दीवारों पर BSA, BEU सहित पुलिस एम्बुलेंस, BEO सहित पुलिस 112, एम्बुलेंस 108 जैसे आपातकालीन नंबर स्थायी रूप से लिखवाए जाएं। लापरवाही मिलने पर प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री विद्यालयों के बजट के पारदर्शी उपयोग, स्मार्ट क्लास व ICT उपकरण को चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन स्कूलों में तुलसी, एलोवेरा, गिलोय जैसे पौधों से युक्त हर्बल मेडिकल गार्डन विकसित करना होगा। स्कूलों में 14 अनिवार्य पंचिकाओं का रखरखाव, डिजिटल माध्यमों पर उनका अपग्रेडेशन करना होगा। फर्स्ट एड किट में एक्सपायरी दवा मिलने या मच्छरों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़काव न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब डालते नजर आज के इतिहास पर क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से। आज ही के दिन 1645 में न्यू मॉडल आर्मी ने नेसीवी की लड़ाई में अंग्रेजी राजशाहीवादी को सेना को हराया। 1940 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को लंदन में फांसी दी गई। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी माइकल ओडियार की गोली मारकर हत्या करी। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने पेरिस पर कब्जा किया। वहीं 1982 में सोवियत संघ अंतरिक्ष यान वोस्टोक 5 को कक्षा में भेजा गया। ये थी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो आज के दिन के साथ जुड़ी हुई थी। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में आकाशवाणी ने नित्य नए आयाम स्थापित किए हैं। आकाशवाणी का ये 90 वर्षों का सफर हमारे लिए गौरवमयी इतिहास है। आकाशवाणी की पहचान उनके दिग्गज आवाजों से भी है जिन्होंने दशकों तक करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज किया। मेलबंडी मेलो की बुलंद आवाज ने 1948 में महात्मा गांधी के अंतिम यात्रा का सफर लगातार 7 घंटे तक आंखों देखा हाल सुनाकर इतिहास रचा था। वहीं अमीन सियानी ने भाई और बहनों के अपने जादुई दोस्त अंदाज में मीना का गीत माला के माध्यम से रेडियो को एक नई शुरुआत दी। क्या करें क्या नए अंदर के अंतर्गत बातचीत करते हैं विषयों के बारे में जो होते हैं आम बन जाते हैं खास। जैसे कि आप देख रहे हैं बारिश होने से, आंधी तूफान आने से जगह जगह जल भराव की समस्या हो गई है। ऐसे में मक्खी मच्छरों के पनपने का पूरा पूरा अंदेशा रहता है। अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें, कहीं भी पानी ना भरने दें क्योंकि अगर कहीं जगह पानी भरा रह जाता है तो कहीं ना कहीं वो बीमारी होने का पूरा अंदेशा है। अपने घर के साथ साथ अपने गली मोहल्लों को भी साफ रखें। नालियों में कूड़ा ना डालें क्योंकि बारिश होने पर यही कूड़ा बहकर सड़कों पर आता है। फिर हम शासन प्रशासन को दोष देते हैं कि वो अपनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अपनी सफाई में कोताही बरत रहे हैं। कुछ जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है। जब भी आप बाहर जाते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं तो दोने पत्तल उनको डस्टबिन में ही डालें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक संभ्रांत नागरिक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अपने ख्याल रखिए, सदा प्रसन्न।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति दे रही थी सुरभि शर्मा, संयोजन ओपी सिंह का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत उस्ताद बहाउद्दीन डागर का राग तोड़ी में निबद्ध ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बहाउद्दीन डागर को। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में जिसका नाम है एक ही फिल्म से। जी हाँ, आ पहुंचा है शनिवार और कार्यक्रम को लेकर मैं आपकी दोस्त दीपिका आज एक बार फिर हूँ आपके साथ। ये वही कार्यक्रम है जिसमें हम करते हैं किसी एक फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें और मैं आपको सुनवाती हूँ उससे जुड़े हुए किस्से और गीत। तो दोस्तों, हमारी आज की फिल्म एक ऐसी

फिल्म है जिसके गीतों को बहुत वर्षों के बाद आज भी पसंद किया जाता है, और इस फिल्म ने इसमें काम करने वाले जितने भी कैरेक्टर थे उन सभी के करियर को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया था। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 1991 में रिलीज हुई फिल्म साजन के बारे में, जो इस वर्ष अपने 35 वर्ष पूरे करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वही साजन फिल्म जिसमें माधुरी दीक्षित, सलमान खान और संजय दत्त ने बेहद बेहतरीन भूमिकाओं के साथ ही बेहद बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन भी किया था। फिल्म के निर्देशक थे लॉरेंस डिसूजा, इसका आलेख रीमा राकेश नाथ का था, निर्माता सुधाकर बुकाड़े, और अभिनेताओं के बारे में और अभिनेत्री के बारे में तो आप जानते ही हैं, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे, कादर खान, रीमा लागू जैसे बेहतरीन कलाकार इस फिल्म में थे। संगीत दिया था नवदीम और श्रवण ने। फिल्म का कुल बजट था 2.5 करोड़ और फिल्म ने उस वर्ष कमाए थे 20 करोड़। इस लिहाज से ये फिल्म सुपर डुपर हिट कही जाती है। आइए सुन लेते हैं एक गीत, फिर बताऊंगी इससे जुड़े हुए किस्से।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। कार्यक्रम को लेकर मैं हूं दीपिका, आपकी दोस्त आज आपके साथ। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी के विषय में मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म वास्तव में देखने लायक है। सभी का अभिनय, कॉस्ट्यूम, सीन, एक्टिंग, हर एक चीज प्रशंसनीय है। बताती हूँ इस फिल्म से जुड़े हुए किस्से। फिल्म में संजय दत्त की जो भूमिका थी, उसे पहले अप्रोच किया गया था प्रसन्नजीत चटर्जी के लिए, जो कि पुराने अभिनेता विश्वजीत जी के सुपुत्र हैं। उन्होंने इस भूमिका को ठुकरा दिया और उसके बाद में ये भूमिका ऑफर की गई आमिर खान को। लेकिन आमिर खान भी उस समय कुछ और शूटिंग्स में व्यस्त थे, जिसके कारण उन्होंने भी इस भूमिका को ठुकरा दिया। फाइनली ये भूमिका पहुंची संजय दत्त के पास, लेकिन संजू बाबा उस समय अपने एक्शन के लिए बहुत फेमस थे और वो एक ऐसे किरदार में अपने आप को सहज नहीं पा रहे थे जिसमें किरदार के हाथ में बैसाखी है और वो अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करता है। इस विषय में उन्होंने जब अपने पिताजी से बात की तो उन्होंने उन्हें कहा कि इस फिल्म में तुम्हें अपने एक्टिंग का स्कोप बढ़ाने का मौका मिलेगा, अपनी भावनाओं को अच्छे से उजागर करने का मौका मिलेगा। और इस तरह से संजय दत्त इस बात के लिए राजी हुए कि उन्हें इस भूमिका को करना चाहिए। दूसरी मुख्य भूमिका में थे सलमान खान और ये भूमिका पहले ऑफर की गई थी ऋषि कपूर को। तीसरी मुख्य भूमिका रही हीरोइन यानी कि माधुरी दीक्षित की। ये भूमिका पहले श्रीदेवी को ध्यान में रख के लिखी गई थी, लेकिन श्रीदेवी भी उस समय फिल्मों के लिए बहुत ही ज्यादा बिजी चल रही थी। फिर ये भूमिका ऑफर की गई आयशा जुल्का को, जिन्होंने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू की, लेकिन उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और बेहद बुखार होने के कारण वो शेड्यूल पर नहीं पहुंच पा रही थी। तब ये भूमिका न्यू कमर माधुरी दीक्षित को ऑफर की गई और उन्होंने क्या गजब का काम किया, उसके तो हम सभी साक्षी हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, वो इस फिल्म के माध्यम से हमें देखने को मिला। किस्मत ने जिसको जहां पहुंचाया वो वहां तक पहुंच गया। फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी हुई सिर्फ और सिर्फ 36 दिनों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 36 दिन में ये फिल्म बनके तैयार हुई थी और 72 हफ्ते तक ये फिल्म स्क्रीन पर अपना कमाल दिखाती रही।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है साजन। दोस्तों, फिल्म की लेखिका थी रीमा राकेशनाथ और रीमा जी के जन्मदिन के दिन ही इस फिल्म को रिलीज भी किया गया था। रीमा जी का जो आलेख था और जिसमें उन्होंने संजय दत्त वाले करेक्टर को लिखा था, वो उनके अपने निजी जीवन से जुड़ा हुआ कैरेक्टर था। रीमा जी जब बहुत यंग थीं और उन्हें एक बेहद फेमस फिल्म के लिए कास्ट भी किया गया था जिसका नाम हम जानते हैं जवानी दीवानी के नाम से, तो उन्हें उस फिल्म में कास्ट किया गया था और सिलेक्शन के बाद शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन रीमा जी का एक बेहद बुरा एक्सीडेंट उस दौरान हुआ जिसकी वजह से रीमा जी ने उस फिल्म में काम करना नहीं कर पाई उसमें किसी वजह से काम, और सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी कि उनका पैर दो जगह से टूटा हुआ था, उनका चेहरा 11 जगह पर टांके लगाए हुए थे और उनको बहुत बुरी तरह से बहुत जगहों पर चोट आई थी। चेहरे पर टांके लगने की वजह से उन्हें लगता था कि अब मैं फिल्म में काम तो बिल्कुल नहीं कर सकती, और ये आशंका काफ़ी हद तक सही भी थी क्योंकि जिस फिल्म में उनका सिलेक्शन हुआ था उन्हें उस फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। काफ़ी महीनों के मेडिकेशन के बाद में जब उन्होंने चलना शुरू किया तो वो लंगड़ाते हुए चलती थी। अब परिवार को चिंता ये होने लगी थी कि हमारी बेटी की शादी भी कभी हो पाएगी या नहीं। हालांकि जैसे जैसे समय निकलता गया रीमा जी ने स्वास्थ्य लाभ लिया और वो काफ़ी हद तक ठीक भी हुई, तो उस समय पर उनकी जो बेबसी रही थी, उनके परिवार की जो चिंता रही थी और वो अपने आप को जिस तरह से बेबस महसूस करती थी और चिंतित रहती थी, उन्हीं भावनाओं को उन्होंने इस कैरेक्टर में उकेरा था जिसे संजय दत्त ने अपने अभिनय से अलग ही लेवल तक पहुंचा दिया। फिल्म के गीतों की बात करें तो एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, पंकज उदास, इन सभी ने बहुत अच्छा काम किया और एक से बेहतर एक गीत इनकी आवाजों में हमें सुनने को मिले। फिल्म का संगीत तैयार किया था नदीम श्रवण ने और उस वर्ष सर्वश्रेष्ठ

तो दोस्तों फिल्म में जो तीनों मेन स्टार कास्ट थी उनकी फीस की बात करूं तो क्या आपको यकीन होगा कि उस समय पर सलमान खान को संजय दत्त और माधुरी दीक्षित से कम फीस मिली थी। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की फीस थी 11 लाख रुपए और माधुरी दीक्षित और संजय दत्त को मिले थे 12-12 लाख। जहां आज एक फिल्म के करोड़ों रुपए फीस के तौर पर लिए जाते हैं, वहीं ये सुपर डुपर हिट फिल्म सिर्फ 2.5 करोड़ में बनके तैयार हो गई और इसका कलेक्शन 20 करोड़ से भी ऊपर रहा। और आज तक इसके कर्णप्रिय संगीत को हम सभी बड़े मजे से सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। तो ये थी बात उन फिल्मों की जिनके संगीत को ऐसे तैयार किया जाता था कि सालों के बाद भी आज भी जब हम उन संगीत को सुनते हैं, उन शब्दों को सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो एक अलग ही रोमांच हमारी नसों में तैर जाता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी साजन। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

सुनिधि चौहान को आप सुन रहे थे अभी। फिल्म थी एक खिलाड़ी एक हसीना, शब्द देव कोहली के थे, संगीत दिया था प्रीतम ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रक्षक से, स्वर अभिजीत का है।

साजन चले ससुराल। इस फिल्म का गीत आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का।

मैं हूं ना, इस फिल्म का एक गीत आपने सुना सोनू निगम और साथियों की आवाज में। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था अनु मलिक का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों के स्वर में आपने सुना राजा फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का।

और पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण और साथियों की आवाज में। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है आनंद मिलिंद का। इस फिल्म को हम ले रहे हैं, इस गीत को ले रहे हैं फिल्म बेटा से।

0: आप सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हम ले रहे हैं फिल्म दरिया दिल से। गीत को आवाज दी है नितिन मुकेश, विठल भाई और साथियों ने। गीत की रचना की है इंदिवर और विठल ने। संगीत राजेश रोशन का है।

ये गीत है फिल्म चालबाज फिल्म से। गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों ने। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: सुनिधि चौहान, ऋतु पाठक और साथियों की आवाज में आपने सुना एक्शन रिप्ले फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था अरशाद कामिल ने, संगीत था प्रीतम का, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। चुनते हैं, चुनते नहीं हैं, सारे ही मैसेजेस लेते हैं, आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं और उसके बाद में सुनवाते हैं आपके लिए आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों को। तो

शुरुआत कर रहे हैं, ये मैसेज हमें मिला है शेरवानी स्कूल गुंज डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का। और ये श्रोता हैं कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष और पांडुरंग कुंभार का। इसी के साथ अगला मैसेज है अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन का, मालियान सरधना मेरठ से। ये हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता के बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिमी तनुश्री गुप्ता और पिहरा बाजार झुमरी तलैया से, अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश साव, वसंतलाल साव, हीरा मोती, पन्ना लाल साव और इनके परिवारीजन। कैंथल हरियाणा से जुड़े हैं हमारे श्रोता जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, मोहाली से टीडी मल्होत्रा, शुभचंद्र बजाज कालका, और ये श्रोता हैं धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगले, शकुन जंगले, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगले और अंजलि जंगले। कोहका भिलाई से हमारे श्रोता हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। इन्हीं के साथ हमारे एक और श्रोता का नाम लें, उनका मैसेज पढ़ें। ये हैं शेगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से हमारे श्रोता संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके संगी साथी। तो आइए सुनवाते हैं आप सबकी पसंद पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं श्रोताओं के व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस को। और अगला एसएमएस अपने श्रोताओं का ले रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। और ये हमारे श्रोता हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, ग्राम फरांसी जिला हिसार से जुड़े हुए हैं हमारे ये श्रोता। और ममता ढींगिया, कुणाल ढींगिया जुड़े हुए हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। हमारे ये श्रोता हैं चंडीगढ़ सिटी से शैफाली, शैफी डेविस, बिमला और सतीश। मनाली हिमाचल से जुड़े हैं श्रोता हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई। इनके साथ ही साथ जनकपुरी सहारनपुर से आया है ये मैसेज जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो का। हमारे ये श्रोता हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा, भाटापारा दत्रिंगी छत्तीसगढ़ से हैं ये जुड़े हुए हमारे श्रोता। और ये श्रोता हैं संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर, कटक से, तिरुपति नगर नांद्रा से जुड़े हुए हैं हमारे ये श्रोता। और अगला संदेश पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता का। ये श्रोता हैं वाराणसी से श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना विनायक सिंह। और ये हमारे श्रोता हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। और हमारे ये श्रोता हैं कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का ये मैसेज है। साथ ही साथ मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतरा भोजने, पीएस नहाकर, तुषार कारांगले का ये मैसेज मिला। और ये संदेश है गंगा रोड कमफिल फरुखाबाद से डॉक्टर प्रवेश कुमार, अखिलेश कश्यप, डिंकल कश्यप, मास्टर जिलेदार, गिरीश तिवारी कश्यप, अरविंद कुमार टेलर, रायपुर कम्पिल और डॉक्टर रामलखन कम्पिल का। ये हमारे श्रोता हैं ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चांसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चांसौलिया। और ये हैं नई बस्ती गंज डुंडवारा।

के श्रोता मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी जुड़े थे हमसे। ये हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप पंचकुला चंडीगढ़ के हमारे श्रोता राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन और इनके सबरे संगी साथी। ये मैसेज आया है ग्राम कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार, भानु प्रताप सिंह पंवार का और समस्त राजपूताना परिवार जुड़ा हुआ है इस संदेश के साथ। ये हैं रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम। और अगले श्रोता कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता का ये संदेश हमें मिला। और ये श्रोता हैं गांधी रोड गंज डुंडवारा से शेख एम कलीम, मुन्ने सलमानी, फातिमा गाजी, शेख मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अजीम शेख, मोहम्मद आसिफ शेख का ये मिला। और सबसे मैसेज आया है ये बलकरण वर्मा का ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। इनके साथ जुड़े हुए इनके साथी अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश प्रमिला बांछौर जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। आकाशवाणी मथुरा के लिए एक और गीत और गीत बात और मैसेजेस के प्रोग्राम के लिए एक और मैसेज आ गया है बुलढाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार का। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार। और अब आपके मैसेजेस की श्रृंखला तो लगातार चल रही है लेकिन आपके लिए गीत भी सुनवाते हैं आप सबकी पसंद पर। लीजिए सुनिए तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत।

तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी के स्वर में। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत था आरडी वर्मन का। और आइए वापस जुड़ जाते हैं आपके संदेशों के साथ। तो ये संदेश है साई बिहार रामपुर उत्तर प्रदेश से सरिता मौर्य, गौतम बी प्रकाश, श्रेय गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्य गौतम और कुश गौतम का। ये हमारे श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। और ये श्रोता हैं, देखिए जिन श्रोताओं का नाम हमने ले लिया है उसके बावजूद दोबारा वही मैसेज मिल रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं अगला संदेश। ये हैं चक 15 पीएस जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन और वैंकूवर कनाडा से रॉबिन सिंह जोसन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम के साथ। और अगला मैसेज राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन का छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से। गीत बात और एसएमएस के लिए अगला मैसेज आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। इसके बाद पढ़ रहे हैं ये मैसेज जो कि बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मिला है, मनभावन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, श्रीमती फुंदीबाई बागरी का। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब के क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर के श्रोता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और ये हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। ये हमारे श्रोता हैं चेतन नाहटा, दीपक, मयंक मूणत, नेहा जैन, विनोद मूणत, बोरखेड़ा, पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। और ये श्रोता हैं ग्राम हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। ये दोबारा से स्थान जरूर यही है लेकिन हमारे श्रोता बदले हुए हैं, गंज डुंडवारा के बहुत से श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये संदेश भी उन्हीं उसी स्थान से है, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी का ये मैसेज मिला। ये मैसेज मिला है राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाणे, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार का। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का ये मैसेज आया है मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। और ये श्रोता जुड़े हुए हैं राज दरबार राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप कुमार नायक, राज बहादुर शाह, शंभु शाह। और ये हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी पूजा तामूरिया, प्रभा देवी तामूरिया। चकला बाजार समाना शहर पंजाब के हमारे श्रोता जुड़े हुए हमारे साथ, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी, आरजी पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा खुशदिल परिवार। ये हमारे श्रोता हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरबाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरबाल। आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग का ये मैसेज मिला है सहारनपुर से। ये हमारे श्रोता हैं राही नगर गंजुंडवारा से शमशुल खान, अदनान खान, फैजान खान, अनु और इनके साथी। और आप सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत जिससे हम सुनवा रहे हैं आपको फिल्म जीवनधारा से। गीत को आवाज दी है आशा भोसले और सुरेश वाडेकर ने।

इसी गीत के लिए ये मैसेज आया है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजबान खान, आयशा सबीह, अनस और रेहान का। ग्राम जखण गांव अहमदनगर से मोहम्मद नाजिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल हमसे जुड़े हुए हैं।

नाराजगी भी मोहब्बत का हिस्सा है, बस हर कोई समझ नहीं पाता। जी हाँ श्रोताओं, अगर आप हमसे नाराज हैं कि आप सभी के संदेश शामिल नहीं हो पाए, तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहते हैं। समय सीमित है और इसीलिए अब कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज्ञा दीजिए, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और SMS, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रजलोकी। आज के कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं घनश्याम शर्मा मधुप। आइए सुनते हैं इनके गाए हुए लोकगीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आइए सुनते हैं घनश्याम शर्मा मधुब के स्वर में कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
4: दूसरा कोई मैच है क्या?
5: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
4: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
6: पर बैंकिंग में नहीं।
7: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
6: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: घनश्याम शर्मा मधुब के गाए हुए इसी लोकगीत के साथ अब कार्यक्रम ब्रज लोकगीत यहीं पर समाप्त होता है।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार थे घनश्याम शर्मा मधुब। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया।

0: उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विवरण।

विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 8 बजे से। राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृत भारती आप सुनेंगे रात्रि 9:30 से। रात्रि 10 बजे आपको सुनवाएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

जागरूकता दिवस और नशा नाशवान। इसी कार्यक्रम में सजेगी रेडियो महफिल। संध्या 6:15 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मिट्टी की जांच और सॉयल हेल्थ कार्ड के विषय में, खरीफ फसलों के लिए उन्नत किस्मों का चयन। आप इस कार्यक्रम में सुन सकेंगे भेंट वार्ता, पशुपालन से खेती की समृद्धि। वार्ताकार विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, इनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र सिंह। इसी कार्यक्रम में हमारे किसान भाई सुनते हैं मौसम का हाल, बाजार भाव, कृषि समाचार और अन्य समाचार, कुछ लोकगीत भी। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45 का। 7:05 पर आपको सुनवाएंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा भक्ति को मार्ग, कथाकार होंगे गोविंद गोस्वामी। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्याम सुहानी लेकर आएंगे 7:31 पर। सुहाने तराने कार्यक्रम का समय रहेगा 9:15 का और 11:10 पर हमारी सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

0: संवेद स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर अंगना। आज के कार्यक्रम को लेकर आ रही हैं बहन विजयलक्ष्मी।

गरंग ना कार्यक्रम को सुनबे बारी हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम। बहनाओं कैसी हो? बढ़िया। बहनाओं हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी बढ़िया होए, सभी को कल्याण देखने को मिले, सबको कल्याण होए, सब मंगल में होए। जय मारा तो हम सवेरे जब भगवान के आगे हाथ जोड़े ना तो यही प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाव भवेत। हम अपने जीवन में सदैव यही सोचें कि को कबू भी मरना है पड़े बहनाओं। और देखो जब हम स्वस्थ होंगे ना तो जब दुनिया में जितने मेला ठेला लग रहे हैं बिनको आनंद ले सकें। तो सबसे अगर परम है या सबसे कोई अहम बात है तो वो है स्वास्थ्य। जा समय अधिक

जा साधना को अपने जीवन में अपना लो है। अरे आज हम ना है हमारे पुराने जमाने से ऋषि मुनि हमारे राजा महाराजा सब जाए योग को करते हुए आए हैं। जी ना है कि हमारे राजा महाराजा ही कर रहे हैं कि ऋषि मुनि कर रहे हैं, सब जनता अपने आप को जो स्वस्थ बनाए भी को सपना देखे करती सब सवेरे उठ के जे योग ठाकुर जी से मिलवाए भी को साधन है, मानसिक शांति को साधन है। क्योंकि अगर सब कछु हमारे पास है और मानसिक शांति ना है तो हम अधूरे हैं। तो अगर हमें अपने चारों तरफ प्रसन्नता आनंद शांति चाहिए तो हमें जब योग से ना तो जोड़ना ही पड़ेगा। और बहनों जब हम योग से जुड़ गए तो मानो ठाकुर जी से जुड़ गए, और ठाकुर जी से जुड़ के तो चारों तरफ आनंद ही आनंद है क्योंकि उनको नाम तो आनंद करे। तो ऐसे प्रभु की शरण में सब ही जा रहे हैं और हम अपने काम में लग रहे हैं। तो बहुत से भैया बहन कह रहे होंगे कैसे जाएं भगवान की शरण में निरो काम है, तो भैया परेशान है भी की जरूरत ना है, कर्म हूँ ईश्वर है क्योंकि कर्म जीवन है। और अपने कर्म को ईमानदारी से करें, और अगर परिक्रमा लगाए भी जानो है ब्रज को वास पानो है तो हम यहाँ बैठे बैठे मानसिक तरीका से तो भगवान की पूजा कर सकें। तो आओ मेरे संग चलो और मन से जुड़ो ठाकुर जी से। तो चलें जुड़ें तो देर काई बात की, आओ जुड़ें।

0: गिरिराज मुकुट वारे के दर्शन करेंगे पुरुषोत्तम लाल गोस्वामी और साथिन के सुर में। अब आई हमारी बहना आनंद ले रही हती जब बहुत सुंदर से लोकगीत को। और बहनाओं, हम सबकी मानसिक परिक्रमाओं लग गई क्योंकि हम मन से ईश्वर के संग जुड़ गए। तभी तो हम की में वृंदावन धाम को वास भलो, यहाँ पास भय यमुना पटरानी, यमुना यम दूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। तो जब हम प्रभु से जुड़े, श्री राधा रानी से जुड़े, तो जो मन की शांति है ना, वह को कहा कहना। और मन की शांति के काज ही तो हम जे सब काम करें, चाहे पूजा होए, चाहे पाठ होए, चाहे योग होए, चाहे ध्यान होए, हम सब यही चाहें कि हमारा मन कहूँ भटके नहीं। हम अपने जीवन के जो अहम पड़ाव हैं उन पड़ाव की तरफ आराम से चले जाएं। हम अपने कर्म को ईमानदारी से करें। तो बहनों, योग आज से ना सदियों से हमारे देश की परंपरा रही है। हमारे बहुत सारे राजा महाराजा, राजा होते भाई भी राजा जनक जी को नाम राज ऋषि कहो जावे, वो योग के बहुत बड़े पसंद करता है। योग करके अपने जीवन को बड़े अध्यात्म के संग बिताते हते। तो बहनों, हम अपने बड़े बूढ़े से ही तो आगे ईमानदारी से कर्म करना सीखें, तो योग हमारे जीवन में कहाँ महत्व रखे, वाको कैसे पालन करें, कैसे करें और कहाँ वाको महत्व है हमारे जीवन में। तो जाकू हम जब भेंटवार्ता के माध्यम से जाने योग के विविध आयाम, जहाँ में हमें जानकारी दे रहे हैं राजेश अग्रवाल और जहाँ जानकारी को हमें दे पा रहे हैं ओपी सिंह। तो आओ बहनों सुने।
1: तो नमस्कार, आपसे मिलिए। मैं आज हमारे साथ हैं राजेश बाबू अग्रवाल साहब, आप योगाचार्य हैं और योग जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, अभिन्न अंग है। हम योग को बहुत सारे आयामों में जी सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं और जब हम व्यवहार में लेकर के आते हैं तो इसके जो फायदे कहें अगर हम, क्योंकि जीवन में आजकल हमारा एक मानसिकता हो गई है कि हर चीज़ को फायदे और नुकसान के तौर पे देखते हैं, तो योग के भी अगर हम फायदों की बात करें, लाभ की बात करें, हमारे जीवन को सुलभ और सहज बनाने की बात, तो योग उसमें हमारी बहुत मदद कर सकता है। तो इन्हीं संदर्भों पर आज हम आपसे बात करेंगे। राजेश जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका।
1: तो क्या बताएंगे, एक आम व्यक्ति इस योग को लेकर के जो धारणा बनाता है, समझता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
2: पहले यही माना जाता था कि योग ऋषियों के लिए है, महर्षियों के लिए है या जो कंदराओं में बैठे हैं उनके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा, वो कितने बड़े योगी थे और राजकाज करते हुए भी योग को अपने जीवन में अपना कर
1: उनको राज ऋषि कहते हैं,
2: राज ऋषि भी कहते थे। आपको बहुत सारे नाम सुनेंगे और आपने देखा होगा राजाओं के जो पुत्र होते थे वो जो है कितने प्रतापी होते थे।

0: तो पुराने समय में तो हमारे राजा महाराजा संतान जो पैदा करते थे उसमें भी योग का योगदान रहता था। ये हमारा योग तय कर देता है कि आपकी संतान कैसी होगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है जिसमें पांच तत्व हैं, उसी प्रकार से हमारी श्वास है, श्वास में भी पांच तत्व हैं। तो किस तत्व के से हम ये गर्भाधान संस्कार करें तो हमारी संतान भी उसी प्रकार की पैदा होगी। कोई दिव्य आत्मा ऐसे ही नहीं आती है इस संसार में, आप देखेंगे उनके आने के पीछे माता पिता का योगदान है। तो माता पिता योगी और योगिनी हुआ करते थे तब दिव्य संतान पैदा हुआ करती थी,
1: तब दिव्य समाज बनता था उसमें।
0: दिव्य
1: तो
0: समाज।
1: योग, ये कहें कि योग की शुरुआत तो आपने बात शुरुआत में रख दी कि जब हम बच्चा आता है इस दुनिया में, आत्मा आ रही है, गर्भधारण हो रहा है, कंसीव कर रहे हैं, तो कैसा वातावरण माँ बाप ने बना रखा है, परिस्थितियां घर की कैसी हैं, उसी तरह की संतान आने वाली है।
0: बिल्कुल, शरीर और मन दोनों चीजें एक साथ हैं। शरीर योग मात्र शारीरिक कार्य नहीं है, योग तो मन से जुड़ा हुआ है और मन के पार ले जाता है। शुरू जरूर से शरीर से होता है, जाता मन के पार है। आप देखें बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है, रोता है। वो रोता है, उसकी श्वास आती है, क्योंकि एक धारणा है समाज में कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, खाली हाथ नहीं आता कोई भी, श्वास के साथ आता है। तो श्वास क्या है, योग का पार्ट, प्राणायाम में आप देखते ही हैं। तो हम श्वास के साथ पैदा होते हैं, यानी हमारा जीवन जो है योग का ही परिणाम है। और जब हम इस संसार से जाते हैं तो क्या होता है, एक श्वास आखिर में गई, वो वापस लौट कर नहीं आई। तो श्वास क्या है, प्राण योग तो क्या है, हमारी मृत्यु भी योग से
1: जीवन,
0: जुड़ी हुई है।
1: मतलब जीवन श्वास ही है,
0: यस, जीवन श्वास है।
1: निश्वास सांस निश्वास है। तो इसमें अब एक आम व्यक्ति जो इस धारणा के साथ जी रहा है, क्योंकि आजकल योग और योगाचार्य का मतलब ये समझते हैं कि जो आसन है वो हम कर लेते हैं तो वो योग है, जबकि पतंजलि के अष्टांग योग में हम यम नियम से चलते हैं, इसमें आप संतोष की बात करते हैं, जिसमें आप ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, जिसमें आप अहिंसा की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, तो वहाँ से एक नींव बनती है। और आपने कहा कि अंतिम उस तक के धारणा ध्यान समाधि तक हम जाते हैं, बीच में और पायदान है उसमें, तो एक बड़े आयाम की चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, सारा जीवन हमारा इससे जुड़ा हुआ है, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे अन्य लाभों की बात करें। वैसे तो स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन कहा गया है कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो सब कुछ उसके लिए संभव है। तो अगर हम स्वास्थ्य ही को साध लें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी परेशानियां और धन खर्च होता है, तो एक बड़ा लाभ तो योग से सदी जाता है।
0: हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि बिना एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। आप शरीर को साध लीजिए, बाकी चीजें अपने आप आने लगेंगी। और इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आप जैसे हेलीकॉप्टर उतारना होता है तो एक हेलीपैड आपको बनाना पड़ता है। तो योग रूपी ये हमारे जहाज को उतारने के लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, और तैयारी के लिए यम और नियम की साधना अनिवार्य है। आप देखेंगे बहुत सारे धर्मों में सत्य और अहिंसा को आधार बनाया गया है, और योग में तो पांच यम है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। और ये केवल शरीर से नहीं करने, मन से भी
1: मन
0: करने,
1: से
0: मनसा
1: करना।
0: वाचा कर्मणा। तो आपने अगर हिंसा की तो हिंसक हो गए, लेकिन आपने हिंसा नहीं की लेकिन सोचा
1: सोचा
0: तो वो भी हिंसा हो गई।
1: विचार से भी
0: विचार से भी
1: हिंसा।
0: हिंसा नहीं होनी
1: हाँ
0: चाहिए।
1: सही
0: और
1: बात।
0: अस्तेय, जैसे चोरी करना, आप चोरी नहीं कर रहे हैं ठीक है, लेकिन किसी की
1: भाव आ
0: वस्तु
1: गया।
0: देख करके लगा कि ये तो मेरे पास होनी चाहिए, तो
1: हाँ
0: ये फिर आपका अस्तेय का पालन नहीं हुआ। तो यम नियम का पालन सबसे पहले करना है। अब नियम में क्या है, हमें शौच, संतोष,
1: संतोष।
0: तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान,
1: जी
0: तो आप देखें इसमें सारी चीजें आ गई। ईश्वर प्रणिधान क्या, भक्ति योग आ गया है ना, तब आपका आ गया, सारी चीजें आ गई। तो इनका पालन किए बगैर आप सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, आपको शारीरिक लाभ होंगे, निश्चित रूप से होंगे, मानसिक लाभ भी होंगे, और लेकिन जो अंतिम स्थिति प्राप्त करनी है आपको, उसके लिए तो आपको इनको साधना ही पड़ेगा।
1: साधना ही पड़ेगा। आप अपने अंदर जब जाना शुरू करते हैं, क्योंकि आसन के बाद फिर प्राणायाम आता है, प्रत्याहार आता है, तो एक क्रम है, और जब हम जाते हैं तो फिर तो वहीं पहुंच जाते हैं जहां समाधि की बात करते हैं
0: बिल्कुल,
1: उसमें।
0: हमारा शरीर घट के समान है। अगर मान लीजिए आपका घट स्वर्ण का बना हुआ है, लेकिन उसमें नीचे सुराख हो रहा है, तो उसमें पानी रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए घट में सुराख नहीं होने देना है। तो ये प्रत्याहार जो पांचवा है, जिसमें कि हम बाहर न देखकर अपने अंदर देखते हैं, हमारी इंद्रियों के आहार हमेशा बाहर है, प्रति आहार उसका उल्टा उल्टा हो गया। आप शरीर के अंदर देखें, कितनी अच्छी बात योग में कही गई, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। सारा ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब हमारे शरीर के अंदर है। आप ये संगम सुनते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, वो सब हमारे शरीर के अंदर में है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के रूप में। तो हमें अपने शरीर को देखना है, और संसार तो हमें स्वयं दिख ही जाएगा। तो दोनों को साधना है, दोनों का बैलेंस बनाना है।

0: आजकल स्वर योग की भी बहुत बात हो रही है इसमें, तो थोड़ा सा इसमें बताएं कि स्वर योग से क्या मतलब है इसे और क्या लाभ होने वाला है व्यक्ति को।
1: सर तो इतना अद्भुत है ये स्वर, आमतौर से लोग ना संगीत वाले स्वर समझ लेते हैं, ऐसा
0: हाँ
1: नहीं
0: हाँ
1: है।
0: हाँ
1: हमारा जो शरीर है इसके अंदर बहुत सारी नाड़ियां होती हैं,
0: जी
1: जैसे आपने सुना होगा ना, गंगा नदी, यमुना नदी। नदी का मतलब क्या है? नदी नद धातु से बना है और जिसका मतलब होता है प्रवाह। तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं जिनके अंदर चेतना का प्रवाह लगातार चलता रहता है। उनमें से 10 नाड़ियां मुख्य होती हैं जो हमारे अलग अलग अंगों पर जाती हैं, आंख पर, कोई कान पर, कोई हमारे मुख में, कोई हमारे जननांगों में, इस प्रकार से जाती हैं। लेकिन 3 नाड़ियां मुख्य हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी।
0: जी
1: जब हमारे शरीर का बायना नथुना चलता है, आप देखते हैं 2 नथुने हमारे,
0: जी
1: श्वास में देखेंगे तो कभी भी दोनों में बराबर नहीं
0: बर
1: चलती,
0: जी
1: एक में कम चलती है, एक में ज्यादा चलती है। तो जिसमें हमारी श्वास चल रही होती है तो वो हमारी सक्रिय नाड़ी मानी जाती है। तो हमारा जो बायां शरीर है, बायां नोस्ट्रिल है, ये चंद्र स्वर है, ठंडक देने वाला है, और दाहिना सूर्य स्वर है। और जब दोनों चलते हैं बराबर तो उसको हम सुषुम्ना में श्वास का प्रवाह कहते हैं। तो हमारे जीवन में 3 प्रकार के कार्य हैं, एक है शरीर के कार्य, एक है मन के कार्य, और एक है आत्मा परमात्मा के कार्य। तो शरीर के जितने भी कार्य हैं, फिजिकल एक्टिविटी, वो सब हमको सूर्य स्वर में करना चाहिए, जैसे खाना है, नहाना है, पखाना है, खेलना है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हमें मन का प्रयोग करना पड़ता
0: शांति की
1: है। हाँ,
0: जरूरत है।
1: जैसे आपको पढ़ना है, आपको मन का कार्य है, जैसे आपको पूजा पाठ करना है, मन का कार्य है, तो वो हमको चंद्र स्वर में करने चाहिए, शीतलता देने वाले कार्य। और हमारे जो व्यवहारिक जीवन में ऐसे कार्य करने जिनका के परिणाम हमारा स्थायी रहने वाला हो, जैसे आपने नया मकान लिया, गृह प्रवेश, चंद्र स्वर में करिए तो स्थायी रहेगा, सूर्य स्वर में नहीं करना है। शादी करनी है, चंद्र स्वर में करिए। आप देखिए आजकल शादियों में बड़े व्यवधान आ रहे हैं, वो सब स्वर की अव्यवस्था के कारण आ रहे हैं। एक तो हमारा स्वर स्वयं, हमारा खान पान, रहन सहन इस प्रकार का है कि स्वर अव्यवस्थित हो गया है। दूसरा, हम जो शादी की रस्में हैं उनको ठीक तरीके से नहीं करते हैं।
0: निभा नहीं रहे
1: अभी होता
0: जी।
1: क्या है, शादी में मुख्य कार्य है शादी होना, लेकिन वही हम नहीं करते, बाकी सारे काम करते रहते हैं।
0: हाँ,
1: उसमें हमारी सूर्य नाड़ी चल जाती है, और जब सूर्य नाड़ी में शादी होगी तो फिर आपकी ज्यादा लंबे
0: तो
1: समय
0: उठा
1: तक
0: पटक ज्यादा।
1: उठा पटक चलती रहेगी। चंद्र नाड़ी में होती है तो फिर स्थायित्व तो रहता है, शांति रहती है जीवन में। तो जितने भी हमारे जो पंडित जी आते हैं, जो शादी विवाह कराते हैं, वो जितने भी रिचुअल्स कराते हैं उनको जरूर करिए, शादी स्थायी रूप से
0: अच्छा,
1: चलेगी।
0: इसीलिए उसको थोड़ा लंबा भी रखा गया है,
1: यस
0: जबकि आजकल लंबा उसको धूमधड़ाक गाना
1: हाँ
0: बजाना खाना पीना ज्यादा हो गया है, और
1: हाँ
0: उसको हम संक्षेप में कर देते
1: यस
0: हैं तो फिर स्थायित्व तो नहीं
1: हाँ। आप
0: है।
1: देखिए, ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो तेज गाने चलाता है, जब तेज गाने सुनता है तो उसका सूर्य स्वर चलता है, तो उस समय तो उसको सूर्य स्वर चाहिए, लेकिन शादी के समय हमें चंद्र स्वर चाहिए। इसलिए भजन गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं फेरों पे। आप देखिए लगातार जब भी कोई शादी की रस्म हो रही होगी, महिलाएं, हमारी माताएं भजन, अलग अलग प्रकार के भजन
0: हाँ,
1: और
0: बड़े
1: गाने
0: बड़े
1: गाती हैं।
0: ठहराव वाले
1: हाँ,
0: धीरे से उससे जो
1: यहाँ
0: है,
1: तो
0: और
1: चंद्रमा आ जाए,
0: समूह में
1: हाँ
0: गाती
1: चंद्र
0: है।
1: स्वर आ जाए। और स्वर में भी एक और चीज है, तत्व होते हैं, एलिमेंट। जैसा आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, ऐसे हमारी श्वास के अंदर भी 5 एलिमेंट बारी बारी से आते हैं। कभी आप देखेंगे श्वास हमारी नाक के अंदर ही अंदर चल रही होती है, उस समय आकाश तत्व होता है। कभी हमारी श्वास बाई ओर जाती है, उस समय हमारा वायु तत्व होता है। कभी गरम गरम श्वास चलती है, थोड़ा ऊपर की तरफ जाती है, तो वो हमारा अग्नि तत्व होता
0: अग्नि
1: है।
0: तत्व
1: और कभी श्वास एकदम नीचे जाती है, सीधी पृथ्वी तत्व होता है। और कभी हमारे होठ को स्पर्श करती हुई जाती है, तो वो जल तत्व होता है। तो ये तत्वों का बड़ा महत्व है, और ये स्वयं से आते हैं, और पिंड और ब्रह्मांड श्वास के माध्यम से ही कनेक्टेड है। अगर आपने नाम सुना हो तो ये शिव स्वरोदय शास्त्र है, जो माता पार्वती और भगवान शिव के बीच का संवाद है। उसमें उन्होंने बड़ी विस्तृत व्याख्या की है, उसके 395 सूत्र हैं। जैसे योग में पतंजलि योग सूत्र है, उसमें 196 सूत्र हैं, उसमें 395 सूत्र हैं। तो वो बहुत बड़ा शास्त्र है, उसको हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी हम अपना लें तो बहुत सारी व्याधियों से दूर हो सकते
0: जी।
1: हैं।
0: इसमें एक मैं जानना चाहूंगा कि इन सब चीजों में जो हमारी शास्त्रीय विधियां हैं, हमारी लोक परंपरा थी, हमारा व्यवहार था, वो कहीं बीच में एक ऐसा गैप आ गया जिसमें कहीं उस पर एक तरह से कहते हैं कि आग के ऊपर राख डाल देना, उस तो बुझ जाती है, तो हाँ एक अंधविश्वास का ऐसा चोला सा पहना दिया कि अरे इनमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पूर्ण विज्ञान था, शुद्ध विज्ञान था, परम विज्ञान था, इसमें तो एक गैप आ गया। तो एक जब आज का बच्चा इन सब चीजों को सुनता है तो उसको ना ऐसा लगता है कि विश्वास करने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो
1: हाँ,
0: ऐसी उससे क्या कहना चाहेंगे आम आदमी
1: अब
0: से
1: मैं बताता हूँ।
0: आप।
1: एक इंजीनियर नया नया बना था, मैंने उसको, उसने मेरे हाथ में योगदंड देखा, तो मैंने कहा भाई, उसने कहा ये क्या है, मैंने कहा तुम अपनी श्वास चेक करो। तो उसने श्वास चेक की, बोले मेरी तो राइट चल रही है। मैंने अपना योगदंड उसको दिया, राइट बगल में लगा दिया। 1 मिनट बाद उससे पूछा, मैंने कहा अभी कौन सी चल रही है, लेफ्ट चल रही है। तो मैंने कहा बताओ ये कैसे हो गया, बोले मुझे नहीं पता कैसे हुआ। मैंने कहा ये विज्ञान है हमारा शरीर, तुम बाहर कार्य करते हो, हमारे अंदर बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है, और मन की स्थिति भी उससे तुरंत बदल जाती है।

0: तो इस प्रकार का प्रयोग करके हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। जैसे किसी को बुखार है, आप चंद्रस्वर चला दीजिए, आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर टेम्परेचर गिरने लगेगा। किसी को जुकाम है, सूर्यस्वर चला दीजिए, थोड़ी देर में आपकी नाक खुल जाएगी। ये तो अद्भुत है। मैं तो पैरासीटामोल से जल्दी काम करता है ये स्वर, उसमें आपको 10 मिनट लगेंगे, और उसमें तो 10 मिनट तक आपके पास इफेक्ट रहेगा, लेकिन जब आपका चंद्र स्वर चलेगा बुखार में, तो थोड़ी देर बाद आप भूल ही जाएंगे कि मुझे बुखार आया।
1: बुखार भी था।
0: हाँ, तो और फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए।
1: अच्छा, आजकल जैसे योग ध्यान की बात करते हैं, तो जो नई पीढ़ी है उसमें हालांकि कर रही है, व्यवहार में देख भी रही है उसमें, लेकिन कई बार वो ये कहती है कि मैं क्यों मानूं, मेरे को इससे क्या जरूरत है, मेरे को क्या, क्योंकि वो इतना भौतिक रूप से और बाहर जीने की आदी हो गई है कि उसे अपने लैपटॉप मोबाइल से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। तो हम इसका खैर विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी जो अपनी चीजें हैं उन पर विश्वास करने और प्रमाण के लिए क्या अपने से बड़े लोगों की, शास्त्र की और उसकी बात को एक बार करके देख ले तो ज्यादा बेहतर होगा।
0: हाँ बिल्कुल। इसमें क्या है कि मेरा कहना है कि इसको अगर कोई ऐसा करता है तो उसको को भाई पहले जानो फिर मानो।
1: हाँ
0: उनको बदलवा करवाओ भाई, ठीक है अगर तुम थक रहे हो तुम, तो थोड़ी देर ऐसी गहरी सांस ले लो, इस मुद्रा में कर लो, सूर्य मुद्रा बना लो, देखो अभी शक्ति आती है कि नहीं आती। और मैं तो स्वयं इंडियन ऑयल में कार्यरत हूँ, वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स करता रहता हूँ, लोगों को कराता रहता हूँ, उनको मुद्राओं का अभ्यास बताता हूँ, हैंड जेस्चर्स, तुरंत मन की स्थिति बदल जाती है, बंद नाक खुल जाती है, मन शांत हो जाता है।
1: करके देख लो,
0: करके देखो।
1: जी जी। और इसमें अगर और थोड़ा सा वो करें कि वसुधैव कुटुंब की जो भारतीय संस्कृति की अवधारणा है वो भी इसमें समाहित हो जाती है कि हम पूरी पृथ्वी को जब एक देखते हैं तो वहाँ एकत्व का भाव सबका होना चाहिए, उसकी हम संरक्षा सुरक्षा करें, उससे जुड़े, योग को अपनाएं तो शायद बेहतर हो सकता है। राजेश जी, आप आए और हमारे श्रोताओं से विचार वाणी से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो कितनी बढ़िया जानकारी अभी हमें ओपी सिंह जी ने दी भाई, राजेश अग्रवाल भैया से, योग के विभिन्न आयाम के माध्यम से। वैसे तो बहनाओं हम सभी खूब योग की बात कर रहे हैं, खूब योग को जाने हुए हैं, और कछु करवी की बात आवे ना तो कबो कबो हम बहन और उनकी बात नहीं कर रही, बहनन की बात कर रही हूँ, हम पीछे हट जावे। क्यों? क्योंकि मैं अरे झाड़ू करना है, पोछा करना है, बर्तन करने हैं, यानी निरे काम है। अरे बहनाओं, काम तो जब आँख खोले ना वही समय जगे, और जब आँख मूंद के लेटे ना वह समय सोवे। अगर रात ना बनी होती तो क्योंकि मैं रात भर एक स्त्री रोटी बनाती रह जाती, क्योंकि भूख तो समय समय पर लगती ही रहे। पर जा समय के पहिया के संग संग हमें चलना है और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अगर जान है तो जहान है। अगर हम स्वस्थ होंगे तभी तो हम आनंद ले पाएंगे जीवन में राग अनुराग को, और कौन ना चाहवे कि हमारा जीवन संपन्न होए, हमारे जीवन में सुगमता आए, मधुरता आए। तो हम सबन को ही मानना है तो क्यों ना हम अच्छे काम करते चलें, जो जरूरत को है और जितना समय मिले उतना। क्योंकि कऊ बात को अगर हम हाय हाय से जोड़ेंगे ना तो हम सफल ना है सके बहनाओं। तो बहनाओं, छोटा सा एक चलते चलते लोकगीत सुन ले, में थोड़ा सा ही समय है, थोड़ा सा ही गीत है, तो आनंद लें जब बहुत प्यारे से लोकगीत को।

प्यारों कैसो ये ब्रज धाम। अभी हम सब डोरीलाल गोला भैया के स्वर में आनंद ले रहे थे जब मधुर से लोकगीत को। तो बहनाओं देखो समय तो पूरा भयो, क्योंकि समय भैया निश्चित है, हमारी सांस निश्चित है, तो हमें समय को सम्मान करना है और अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देना है। तो हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम। फिर मिलेंगे बहनाओं अगले शनिवार को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगना। आज के कार्यक्रम को पेश किया बहन विजयलक्ष्मी ने। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। आज उड़िया भाषा के गीत को आप सुनेंगे। गीतकार हैं केसी पाणिग्रहे।

0: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा। सीखोगे ना?
1: हाँ।
0: ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है?
1: श्री
0: कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
2: क्यों नाम
1: धरी
2: डाकी तुमको,
1: तुमे
2: जे सर्वनाम, क्यों नाम
1: धरी
2: डाकी तुमको, तुमे
1: जे
2: सर्वनाम।
0: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला अंतर लिख लो।
2: आलोक तुमको नपारे
1: देखाई,
2: तुमे जे देखाओ ताहारे, आलोक तुमको नपारे
1: देखाई,
2: तुमे जे देखाओ ताहारे, तुमे जे बेढ़ी चो, कोटी विश्वर सबुरी भीतरे बाहरे, तुमे जे बेढ़ी चो, कोटी विश्वर सबुरी भीतरे बाहरे,
0: ये हुआ पहला अंतर। अब दूसरा अंतर।
2: लुहा होई तुमे, झरी पड़ा परा, केते नयनर कोणरु, लुहा होई तुमे, झरी पड़ा परा, केते नयनर कोणरु, हस होई पुणी, फुला परी फुट, केते जे नरम अधरु, हस होई पुणी, फुला परी फुट, केते जे नरम अधरु, क्यों नाम
1: धरी
2: डाकी तुमको, तुमे जे सर्वनाम।
0: अब हम गाना सीखेंगे। ये गाना खेमटा ताल में है। इसकी 6 मात्राएं हैं। ताल कैसा है ये पहले देख लो। इसमें एक ताली और एक खाली है।

0: अब हम गाना सीखेंगे।
1: नम धरी डाकी तुम वन टू थ्री फोर।

0: तुमने गाना सीख लिया, इसे अब तुम सब मिलकर गाओ देखें।
1: One, two, three, four.

0: a girl child across the country. Data from the Health Management Information System show that the national sex ratio at birth has improved from 918 in 2014-15 to 929 in 2024-25, reflecting sustained efforts to prevent gender-biased sex selection and promote institutional deliveries. And in sports, in men's cricket, the toss for the first ODI of the three-match series between India and Afghanistan has been delayed due to rain in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match was earlier scheduled to begin at 1:30 p.m. Star India batter and former skipper Rohit Sharma is expected to be in action in today's match. The remaining two matches of the series will be played in Lucknow and Chennai. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. The weather agency also predicted heavy rainfall conditions over parts of Bihar, Kerala, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia, says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम

0: भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
4: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
3: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
5: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और CCTV तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों

0: का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने

0: में से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में

0: मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में आपने सुना फिल्म ललकार का ये गीत। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म अजनबी से। इस गीत को आवाज़ दे रहे हैं किशोर कुमार।
1: हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
0: आनंद बख्शी की रचना है और संगीत है आर डी परमन।

0: शादी? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

किशोर कुमार के स्वर में आपने सुना अजनबी फिल्म का ये गीत, और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लोहा से। इस गीत को आवाज दे रही हैं अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: आप सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के कार्यक्रम को।
1: सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का अगला गीत हम ले रहे हैं फिल्म शान से। इस गीत को आवाज दी है उषा उत्थुप और साथियों ने।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में आपने सुना आज का अर्जुन फिल्म का ये गीत। शब्द रचना अनजान की थी, संगीत था बापी लाहिरी का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, दिल ही दिल में। सुनिए इस फिल्म के गीत को, आवाज दी है रेमो फर्नांडिस और देवेन ने।

दिल ही दिल में। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना रेमो फर्नांडीज और देवेन और साथियों की आवाज़ों में। इसी के साथ सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी पहली सभा यहीं पर समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:30 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हो चुके हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा का सफर अब शुरू होता है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

जी हाँ दोस्तों, पार्टी, नशा और युवा। दोस्तों, आज का युवा जरा भी हतोत्साहित होने पर सबसे पहले नशे की ओर खुद को धकेलता है। ये जानते हुए कि नशा नाशवान है और जीवन को सिवाय हार और नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं देगा, वो खुद को इस कुएं में गिराता जाता है और वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य को भी संकटग्रस्त करता है। नशा क्षणिक सुख देता है, लेकिन जीवन भर को दुख ही देता है। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उसके सपनों, ऊर्जा और प्रतिभा पर देश का भविष्य निर्भर करता है। लेकिन आज नशे की बढ़ती प्रवृत्ति युवाओं के भविष्य पर गंभीर खतरा बनती जा रही है। कई युवा जिज्ञासा, मित्रों के दबाव, तनाव या दिखावे के कारण नशे की ओर आकर्षित तो हो जाते हैं, साथ ही साथ शुरुआत में यह केवल एक आदत लगती है, परंतु धीरे धीरे यह लत बनकर जीवन को बर्बाद कर देती है। नशा न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी कमजोर कर देता है। इसके कारण पढ़ाई, करियर, पारिवारिक संबंध और सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अनेक युवा अपने सुनहरे भविष्य को नशे की भेंट चढ़ा देते हैं। नशे से बचने के लिए युवाओं को सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। खेलकूद, योग, संगीत और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। माता-पिता, शिक्षक और समाज को भी युवाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि उन्हें सही दिशा मिले। नशा कोई समाधान नहीं है, बल्कि समस्याओं की जड़ है। यदि युवा नशे की लत से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, तो वो न केवल भविष्य उज्जवल बनवा सकते हैं, साथ ही साथ वर्तमान को भी अपने महत्वपूर्ण कार्यों से और अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर उसे सुनहरा बना सकते हैं।

संयम और संतुलन ही अच्छे जीवन का आधार है। किसी भी प्रकार की अति व्यक्ति के चरित्र और जीवन को नुकसान पहुंचाती है। युवा शक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का विकास करना और समाज की सेवा करना होना चाहिए। कोई भी आदत जो मनुष्य को कमजोर बनाए, उससे हमें दूर रहना चाहिए।

तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आज की बात के अंतर्गत नशा नाशवान विषय पर, और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के बारे में। हर वर्ष 13 जून यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एक आनुवांशिक स्थिति जिसमें शरीर में मेलेनिन रंग द्रव्य बहुत कम या नहीं बनता है के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना तथा प्रभावित व्यक्तियों के समान अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देना भी है। यह दिवस समाज में समावेशिता, समानता और मानव अधिकारों के महत्व को भी रेखांकित करता है। एल्बिनिज्म एक आनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलेनिन नामक रंग द्रव्य कम या बिल्कुल नहीं बनता। इसके कारण व्यक्ति की त्वचा, बाल और आंखों का रंग सामान्य से हल्का हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रहे, एल्बिनिज्म कोई संक्रामक रोग नहीं है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य एल्बिनिज्म के बारे में जागरूकता फैलाना, इससे जुड़ी गलत धारणाओं और भेदभाव को समाप्त करना है, प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना, समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना भी है। यह दिवस हमें सिखाता है कि सभी लोग समान और सम्मान के अधिकारी हैं। एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज की बात के अंतर्गत टॉपिक्स की, जो थे अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस और नशा नाशवान, ये दो विषय थे। और अब आपको लिए चलते हैं रेडियो महफिल की तरफ और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत पंकज उधास की आवाज़ में।

या दोस्तों, ये गीत अभी आपने सुना हैरी आनंद की आवाज़ में, और कार्यक्रम युववाणी में आज आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत। इस क्रम में अब चलते चलते सुनते हैं ये गीत हंसराज हंस की आवाज़ में।

या दोस्तों, अब कार्यक्रम में चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे, संयम वह गुण है जो मनुष्य को इच्छाओं का दास बनने से बचाता है। उसका मानना था कि किसी भी रूप में यह हानिकारक ना हो। व्यक्ति अपनी कमजोरियों और प्रवृत्तियों को समझे, तभी वह उन पर नियंत्रण पा सकता है। इन्हीं सुविचारों के साथ कार्यक्रम युववाणी अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000

0: जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए, प्रस्तुत है सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आज रात्रि 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृत भारती। रात्रि 10:00

सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी संध्या 6:15 पर आप सुन सकते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे मिट्टी की जांच और सॉइल हेल्थ कार्ड, खरीफ फसलों के लिए उन्नत किस्मों का चयन। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भेंट वार्ता, पशुपालन से खेती की समृद्धि। जानकारी देंगे डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, बातचीत करेंगे वीरेंद्र सिंह।

संध्या वंदन, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 6:45 पर। ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भक्ति को मर्म, इस विषय पर प्रसंग। कथाकार होंगे गोविंद गोस्वामी। श्याम सुहानी, श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 7:31 पर। रात्रि 8 बजे आपको सुनवाएंगे विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। देश गान सुनिएगा रात्रि 8:35 पर।

सुहानी तरानी आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

0: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
1: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है।
0: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
1: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
2: कृषि और किसान कल्याण

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनान को रूप किशोर की राम राम। भैया मौसम को हाल तो आप जान ही रहे हो, कल हैवी भारी बारिश थे, मौसम में कछु नमी है और ऐसी गर्मी ना है। भैया गर्मी हो या सर्दी, हम सब किसान भैया ने तो अपनी खेती बाड़ी में काम करना, अपने पोई ढोर को इंतजाम करना। बात आज हम करें भैया मिट्टी की जांच और सॉयल हेल्थ कार्ड। मिट्टी की जांच और सॉयल हेल्थ कार्ड भैया दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। मिट्टी की जांच, जैसे हम जब बीमार है जामें तो डॉक्टर के पास जामें और डॉक्टर हमको हमारी खून की जांच लिखे और वह जाँच कराए के हमें रिपोर्ट मिले और वह रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर हमको इलाज दे। वही व्यवस्था मिट्टी की जांच और सॉयल हेल्थ कार्ड की है। सॉयल हेल्थ कार्ड को मतलब है गो मृदा परीक्षण को कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। खेत की माटी की जांच करावे के बाद जो हमें रिपोर्ट मिले वो वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड में लिखी हुई होए। और जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये एक सरकारी योजना है और या में हमारे किसान भैयान की जो माटी है खेत की, वह की गुणवत्ता, वह में मौजूद पोषक तत्व को सटीक वैज्ञानिक वह में जानकारी हमको मिलो करे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से हमें भैया अनेकों लाभ होए। पहलो लाभ तो जी होए कि हम ज़्यादा पैदा लेवे के काजे अपने खेतन में अधाधुंध रासायनिक उर्वरकन का उपयोग करो करें। जब आप कृषि विज्ञान केंद्र या काओ प्रयोगशाला पे जाएंगे और जब आप माटी की जांच कराएंगे और माटी की जांच करावे के बाद जब आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा तो वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड में ये सब बात लिखी हुई होए कि हमारे खेत में कौन सी पोषक तत्वों की कमी है, हमारी खेत की माटी को अम्लीय क्षारीय जाको हम पीएच मान के करते हैं वो कितनों हैं, जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक, लोहा, तांबा, मैग्नीज, बोरॉन, इन सब की जानकारी हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिलो करे। जब हमें पता चल जाएगी कि हमारी खेत की माटी में इन पोषक तत्वों की कमी है, इन उर्वरकन की कमी है, तो हम भाई के आधार पर अपनी खेत में उर्वरकन को प्रयोग करेंगे और जब हमारी जो लागत है वहाँ में कमी आवेगी। जब लागत में कमी आवेगी और हमें पता चल जाएगी कि हमारे खेत में या की अधिकता है और या तत्व की कमी है और वाकई आधार पर ही जब हम हमें अनावश्यक उर्वरकन का उपयोग बंद कर देंगे, हमारी खेत की माटी की जो दशा है वो सुधरेगी, फसल अच्छी होगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी, वाकई गुणवत्ता बढ़ेगी और हमारी खेत की माटी की सेहत सुधरेगी। तो हम तो किसान भैया आपते जी कहेंगे कि भैया या समय हमारे किसान भैया के खेत खाली पड़े हैं तो तुम अपने खेत की माटी की जांच करा लें और खेत की माटी की जांच करावे के आधार पर जो रिपोर्ट आवे मृदा स्वास्थ्य कार्ड बने व मृदा स्वास्थ्य कार्ड की

आधार पर अपनी खेती में उर्वरक को प्रबंध करें तो वहाँ में आपकी लागत तो कम आवेगी, आपकी फसल वो अच्छी पैदा देगी और संग ही संग आपके खेत की माटी को स्वास्थ्य भी सुधर जावेगो। तो ये तो चर्चा रही भैया मिट्टी की जांच और सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में। और अब एक लोकगीत हम आपको सुनवा दें, शालिनी शर्मा की स्वरते के बालम सुन ले बात हमारी मोते लड़े जिठानी दारी।

बालम सुन ले बात हमारी, मुते लड़े जेठानी दारी। जालू गीत को अपने स्वर ते सजाए शालिनी शर्मा ने। भैया अब बात करें कछु खेती बाड़ी की, तो यह चीज को तो आपो जानो और सभी जाने कि वो

किसान ना आए या किसान के आंगन में दो चार पौए ना आए। भैया, पशुपालन और खेती दोनों एक दूसरे के पूरक हों। पशुपालन के बिना भी खेती अधूरी है और खेती के बिना पशुपालन अधूरा है। तो आज हम जो आपको एक भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं, पशुपालन से खेती की समृद्धि

0: भैया देखो, जैसे कि आप जानो, जो खेती हमारी जो है पशुपालन के बिना अधूरी है, और वो पशुपालन से जो है खेती की समृद्धि है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि भैया कि हम अपनी खेती को करें और पशुपालन करके वाकई जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी कह लियो गोबर है, वाको मूत्र है, वाको हम सदुपयोग करके अपनी खेती के काज ऐसे उत्पाद बना सकें जाते खेती हमारी बिल्कुल स्वस्थ रहे और वाकी पैदावार ज्यादा बढ़े। डॉक्टर साहब राम राम साहब,
1: राम राम किसान भाइयों को मेरी राम राम।
0: कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, खेती के संग संग पशुपालन जरूर करें, क्योंकि पशुपालन ही हमारी खेती की समृद्धि को आधार है। तो या ते संबंधित की चर्चा करते हुए हम आप कार्यक्रम को आगे बढ़ावे, तो आपके विचारते यह बात में कितनी सच्चाई है कि पशुपालन जो है खेती की समृद्धि को आधार है?
1: जी धन्यवाद बीरेन जी। और मैं अपना खुद का अगर व्यक्तिगत अनुभव साझा करूं
0: जी
1: कि किस तरीके से हम लोग पशुपालन से आधारित कृषि खेती जिसको हम करते थे, हमने अपने खुद ही जो है अपने समय में छोटे थे हम, जब 7वीं 8वीं तक स्कूल गांव में पढ़ा करते थे,
0: जी
1: तो हमें भी याद है दशहरा दिवाली के मौके पे सर के ऊपर गाय का गोबर जो हमारे रखा जाता था पूरी बरसात में 3-4 महीना, उसको घूर बोलते हमारे यहाँ घूरा,
0: घूरा।
1: वहां
0: हाँ
1: से निकाल निकाल के हम खेतों में डाला करते थे। तभी
0: जी
1: हमें जो है दशहरा और दिवाली पे पटाखे लेने के पैसे मिला करते थे। तो हमें आज उसका महत्व तो हमें याद आया कि उसके बाद हम जब उसको खेत की जुताई हल और बैल की होती थी, तो उसकी मिट्टी और उसकी जो खेत की जो फसल होती थी, उसकी पैदावार और उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरीके की होती थी।
0: जी
1: हम जिस क्षेत्र के थे वहां पे अक्सर शुरुआत में दशहरा दिवाली के बीच में आलू की अगेती आलू, बाद में फिर आलू की ज्यादातर खेती होती है कैश क्रॉप रूप में, इसके अलावा गेहूं और सरसों वगैरह सब लगती है तो पूर्वांचल क्षेत्र में। तो उस समय मैंने इस चीज को, अभी मुझे याद आया तो मैंने सोचा चर्चा करें। हम जब देखते थे डालते थे तो हमको बहुत सारे गुबड़ैले दिखा करते थे और छोटे छोटे गोला बना करके खेत के अंदर ले जाते थे।
0: बिल्कुल
1: तो गाय का गोबर, भैंस का गोबर जो हमारे यहाँ होता था, इसके अलावा हमारे दादाजी, हमारे पिताजी लोग, चाचा लोग, हमेशा जो भी खेत में गोबर नहीं पहुंच पाता था, गोबर कम पड़ जाता था, तो हमारे गांव में कुछ भेड़ चराने वाले लोग, उनका झुंड होता था, तो मैंने देखा है खुद ही। और गांव के लोग उनको बारी बारी से अपने खेतों में एक एक दो दो दिन के लिए, जब चौमासा खत्म होता है यानी कि पितृपक्ष वगैरह, तो उसके बाद से शुरू करते थे, ठंडानी शुरू होती थी, तो एक एक दो दिन के लिए उन खेतों में भेड़ों को रोका जाता था। उसके बदले में उन भेड़ पालकों को कुछ न कुछ गांव के लोग अनाज या जो भी पैसा, जैसे जिसकी है
0: हाँ,
1: क्षमता,
0: श्रद्धा के अनुसार
1: उस हिसाब से बात करके उनको रखा जाता था।
0: जी।
1: वो भेड़े उसी खेत के अंदर सारी वो वीड्स वगैरह को खाती भी थी, जो उनके खेत के खरपतवार होते थे उनको खत्म भी करती थी,
0: बिल्कुल
1: खराब घास, खराब फसल, जड़ वाली कोई भी जड़ निकल रही कोई चीज, तो वो रात भर दिन भर वहीं रहती थी और खेत में ही वो अपना मल त्याग
0: हाँ
1: करती थी। तो
0: बिल्कुल
1: उनका जो भी मैंगनी वगैरह आती थी उसी खेत के अंदर ही रहती थी, उससे खेत की उर्वरता बढ़ती थी, फिर जुताई होती थी।
0: बिल्कुल
1: तो ये पद्धति हमने देखी थी। और हमारे उस समय में ज्यादातर यूरिया और डीएपी ये सब उतना इस्तेमाल नहीं होता था। पैदावार अगर आप देखें उस हिसाब से, आज के समय के हिसाब से, तो जरूर थोड़ा कम रहती थी, लेकिन जो फसल की क्वालिटी होती थी उसका आप अगर असर देखें, मतलब पशुओं के स्वास्थ्य में और इंसानों के स्वास्थ्य में,
0: बिल्कुल
1: उस समय के आप पुरानी पीढ़ी के लोग आप देखें उनकी स्वस्थ स्वस्थ कितने होते थे,
0: हाँ, आयु लंबी।
1: आयु लंबी, और आज देखिए आप 90 साल 80 साल तक निरोगी शरीर रहता था।
0: हाँ
1: इसका बहुत बड़ा महत्व है जो हमारी सरकार ने अभी ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दिया है।
0: डॉक्टर साहब, अगर भैंस ब्याह जाए तो ब्यावे के कितने दिन बाद जो है भैंस जो है हीट पे आ जाए और वह सही समय पे करवा देना चाहिए?
1: तो देखिए अक्सर भैंसों में थोड़ा सीजनल साइकिल होती है, फिर भी आमतौर पे ब्यात होने के 3 से 4 महीने के अंदर भैंस गर्भाधान कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो उसको आप एक कीड़े की दवाई दे दें, मिनरल मिक्सचर दे दें, ठीक है, अच्छी कंपनी का कोई मिनरल मिक्सचर उसको दे करके उसको आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द वो हीट में आए। और हीट भैंस में अक्सर एक होती है साइलेंट हीट, जिसको आप पता नहीं कर पाते हो। आजकल हम लोग क्या है कि भैंसा और सांड के पास पशु ले जाना काफी कम कर दिए हैं, और भैंसा और सांड पहले गांव में लोग रखते थे, वो भी एक व्यवसाय का जरिया हुआ करता था लोगों के आय का, तो कुछ लोग 2-4

0: गांव 10 गांव के बीच में एक आदमी दो आदमी ऐसा काम करते थे जो भैंसा रखते थे या गाय का सांड अच्छी क्वालिटी का रखते थे। गाय भैंस को जो है गर्भाधान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब वो पद्धति जबकि जब से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रचलन ज्यादा बढ़ा है और पशुपालक भाई चाहते हैं, क्योंकि अब वो दो आदमी तीन आदमी लग करके गाय भैंस को ले जाना, फिर ले आना, फिर भैंस उसमें कूदती है, भागती है, गाय सब कुछ होता है, तो उसकी अपनी एक समस्या है क्योंकि मैन पावर की कमी हो गई है। आजकल मजदूर या गांव के लड़के जो भी अपने परिवार को होते हैं वो सब पढ़ने लिखने बाहर चले आते हैं नौकरी करने। तो जो आपका पशुपालन का अभी जो कमी आई है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं का भागीदारी और युवाओं का पलायन जो हो रहा है ग्रामीण से रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जो है अभी हमारे ग्रामीण अंचल में पशुपालन की स्थिति थोड़ी सी कम हो गई
1: कम हो गई है।
0: अगर आप 30-35 साल 40 साल अपने बचपन के दिन हम याद करें तो उस समय तो काफी ज्यादा था। हम अपने समय में
1: 10-10, 20-20, 20-20, 30-30
0: जिसमें जानवर इतने होते थे, हम लोग कभी कभार ऐसा लगता था कि उनको लेकर के चराने जाते थे या कभी खाली खेत में निकल गए,
1: पोखर में पानी
0: पानी, वो सारी चीजें होती थी। तो अब हम अपने यहाँ खुद के देख रहे हैं आज के दिन में एक से ज्यादा पशु रख पाना संभव
1: नहीं हो रहा है,
0: क्योंकि तब स्थिति अलग थी, अब स्थिति अलग है। खेत की जोत हो गई कम, इसके अलावा युवा घर पे है नहीं, बुजुर्ग हैं या कोई सिंगल एक व्यक्ति है, घर में तीन भाई हैं तो तीन में एक ही परिवार में एक ही आदमी कुल गांव में रह रहा है, तो उसके भी बच्चा, कोई एक बच्चा है, किसी का दो बच्चे हैं, तो वो भी पढ़ने लिखने में लगे हुए
1: बाहर
0: तो
1: चले।
0: ये सारी समस्याएं हैं जो ग्रामीण अंचल में पशुपालन को कम करने में जिम्मेदार हैं आज के समय में। अब समय ये है कि हमें ग्रामीण अंचल में ही आय का जरिया बढ़ावा देने के है, तो हमें एक प्राकृतिक खेती की तरफ और इसके अलावा हमें पशुओं का महत्व खेती में बढ़ाने की आवश्यकता है। समय आ गया है, हम सबको इसके बारे में सोचना होगा, सभी किसान भाइयों को सोचना होगा, ताकि हम अपनी धरती माता की उर्वरता बना के रखें।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे किसान भैया पूछते रहे कि भेड़ है, बकरी है, गाय भैंस है, जी हमारे पशु हैं, जी खेती के काज जो है कैसे लाभकारी सिद्ध है सके, अगर हमारा हरेक भैया पशुपालन करे तो वो खेती कैसे लाभकारी बना सके अपने पशुओं के माध्यम से।
0: अभी हम इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि पशुओं में हमारा अगर देखें तो चार मेन प्रमुख पशु हैं जो हमारे देश में आमतौर पर किसान भाई या पशुपालक भाई पालते हैं, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। अगर इन चारों को, इसके अलावा पोल्ट्री का भी अपना है, पोल्ट्री की बहुत ज्यादा आजकल जरूरत है, तो देश में प्रोटीन की जरूरत है, सिर्फ दूध से ही काम नहीं चलना है, हमारी जो आबादी है जिस तरह की रिक्वायरमेंट, तो पशुपालक भाइयों को ये हमारा है कि सुझाव है कि आप कोशिश ये जरूर करें, अगर आप गाय भैंस संख्या आप पास ज्यादा नहीं पाल सकते तो भेड़ बकरी का पालन, खास करके बकरी का पालन अगर आप आज शुरू करते हैं। बकरी में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, मुर्गी पालन में भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, गो पालन में तो है ही, और गो पालन में कोशिश जरूर करें कि हम अपनी जो देश की जो ब्रीड्स हैं, देसी गोवंश,
1: देसी गाय,
0: भले वो आजकल सरकार ने कोशिश की है कि उसको अच्छी क्वालिटी का सीमन उपलब्ध कराने की देसी गायों में ही, उनका खान पान भी अच्छी तरह आप करें तो वो भी आपको 8 से 10-12 लीटर दूध दे रही हैं। संकर नस्ल की जो गायें हैं वो बनने से बीमारियों के प्रति इतनी ज्यादा ससेप्टेबल है, वो इतनी बीमारियां उनके अंदर आती हैं, जो दूध का पैदावार अगर 2 लीटर ज्यादा है तो निश्चित तौर पर वो मान चलिए उसको रिप्रोडक्टिव या बच्चेदानी संबंधी बीमारियां होती हैं, इसके अलावा तमाम ब्लड प्रोटोजोअन डिजीज होती हैं, वो इन्फेक्शन के लिए उनकी इम्यून सिस्टम हमारे देश के हिसाब से ढला नहीं है। मौसम परिवर्तन आप देख रहे हैं, कितना तीव्र गर्मी पड़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: बाहर की नस्ल कोई भी हो, हाइब्रिड अगर आप क्रॉस भी कर लेते हैं तो पशु का स्वास्थ्य तो उसका आधा जीन तो आ ही गया, अगर वो 2 जनरेशन चला तो 70% 75% पहुंच गया। तो आप धीरे धीरे अगर आप देखें जो पशु जिस ब्रीड ठंडे प्रदेशों के लिए उपयुक्त है उसको हम अपने उत्तर भारत में या गर्म प्रदेशों में जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उमस और गर्मी ज्यादा है, वहां पे वो सर्वाइबिलिटी, उसकी हेल्थ एस्पेक्ट सब अफेक्टेड होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो अगर वो हेल्दी नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन सही नहीं देगी। तो हमारे पशुपालकों से हमें यही, हमारा यही अनुरोध है, आप कोशिश करें देसी गोवंश को इस्तेमाल करें, हो सकता है आपको थोड़ा पैदावार कम आए लेकिन निश्चित तौर पर आप मान चलिए स्वास्थ्य भी जरूरी है। ठीक है, हमें भविष्य में अगर इस चीजों को हमें आगे चल के अपने देश को आगे बढ़ाना है और बचाना है।

0: और स्वस्थ भी रहना है सबको, तो जैविक खेती, खास करके पशुपालन का महत्व जैविक खेती में, बिना पशुपालन के जैविक खेती संभव ही नहीं है। और आप बाजार में चले जाइए किसी भी प्रोडक्ट पे, आप देखिए ऑर्गेनिक के नाम पे कितना रेट ज्यादा मिल रहा है।
1: और क्या,
0: अगर अरहर की दाल 200 रुपया किलो मिल रही नॉर्मल, तो ऑर्गेनिक निश्चित 240 250 या 300 रुपए तक मिल रही है, उसके पैकेट ये लगा रहे हैं, और वो सर्टिफाई भी कराई जा रही है कि प्योरली ऑर्गेनिक है, और उसका रेट भी किसान भाइयों को ज्यादा मिल रहा है। आप किसी फल फूल कहीं भी चले जाइए, आपको ऑर्गेनिक का पूरा सेक्शन बना हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: तो उसका मतलब एक तरह से डिमांड ज्यादा है, लोग को जागरूकता भी बढ़ रही है, जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की तरफ जागरूक हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम स्वास्थ्य के लाभ को देखते हुए।
1: और डॉक्टर साहब देखो, एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि अब आलू पे ही ले लें, आजकल लोग आलू में जो है प्रति बीघा में, छोटे बीघा की बात करें तो दो दो कट्टा वाके डीएपी के यूरिन के डाल रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: अब जब आलू जब खुद के आवे वाको स्वाद देखो, कोई स्वाद नहीं,
0: बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं,
1: ऐसो है जाए ले ही सी बन जाए।
0: अब आप इसके बारे में बात करें फर्टिलाइजर की, केमिकल्स की, तो केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं, देखिए सल्फेट और जिंक और नाइट्रोजन तीन मुख्य है जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होती है
1: जी,
0: बाकी डायमोनियम फास्फेट वगैरह है। तो फास्फेट, सल्फेट और अगर आप देखें तो नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अल्टीमेटली धरती के अंदर जो मिनरल्स हैं और जो चाहे फसलों के लिए, भाई फसल तभी ग्रो करेगी जब उसको धरती माता से अच्छी तरीके से प्रचुर मात्रा में अच्छी तरीके से मिनरल्स प्राप्त होंगे।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और तभी फसल भी हेल्दी रहेगी और उसको खाने वाले चाहे पशु हो चाहे इंसान हो,
1: इंसान हो,
0: उनका स्वास्थ्य भी, कि हम लोग जो मिनरल्स पाते हैं धरती से और पानी से, और बकरी पालन बढ़ावा दें।
1: डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमें उम्मीद है कि किसान भैया जाते जरूर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब।
0: राम राम।
2: अभी भैया सुन रहे थे भेंट वार्ता को, जमे जानकारी दे रहे डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, पशुपालन से खेती की समृद्धि, और भैया इनसे बात कर रहे वीरेंद्र सिंह, और भैया अब दामोदर शर्मा के स्वर से सजाओ जी एक लोकगीत के कह दीजो उदो इतनी सी बात हमारी।

0: कैदी जो उधो इतनी सी बात हमारी, जा लोक गीत को अपने स्वर से सजाए दामोदर शर्मा ने। भैया अब बात करें खरीफ फसल के काजें जो हमारी उन्नत किस्मों हैं, हमारे किसान भैया जिनके पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं वो खरीफ की फसल में मुख्य रूप से धान की फसल करो करें, और धान की फसल में जो उन्नत किस्म होएं वो होएं नरेंद्र 359, नरेंद्र धान 2026, नरेंद्र धान 2064, 2065, नरेंद्र धान 3112, PHV 71, पायनियर 27 P31, पायनियर 27 P37 और पायनियर 28 P67, कावेरी 468, RH 312, CLR 10, नरेंद्र ऊसर धान 2008। बहुत से किसान भैया खरीफ में मक्का की बुवाई करो करें, और मक्का की जो अच्छी प्रजाति हों जिनमें संकुल प्रजाति हों कंचन, गौरव, श्वेता, आज़ाद, और संकर प्रजाति हों प्रकाश वाई 1402, बायो 9681, प्रो 316, डी 9144, PHV 8144, दक्कन 115, इन सब प्रजाति की आप बुवाई कर सकें। और अब बता दें आज के मौसम के हाल, तो आज को जो अधिकतम तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। भैया 14 तारीख और 16 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, आंधी तूफान, बिजली कड़कवे और तेज हवा चलवे की संभावनाएं। तो इतो रहो मौसम को हाल, पर भैया घड़ी की सुई हमें इशारो कर रही है अपनी जा कार्यक्रम के समापन के ताई। तो भैया हम सब आप ते लें आज्ञा और आपको करें राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे रूप किशोर शर्मा।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

हरि ओम शरण की आवाज़ में आपने सुनी ये भक्ति रचना। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी चित्रा सिंह की आवाज में। कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

कार्यक्रम के अंत में आपने सुनी है भक्ति रचना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जय संतोषी माँ से। और इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, ब्रज साहित्यिक। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भक्ति को मर्म, इस पर प्रसंग। कथाकार हैं गोविंद गोस्वामी।

नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती तव्यासं ततो जयत मुद्रेयतः। नारद जी कली के दोष देखकर यमुना तट पर पधारे, वहाँ उन्हें बड़ो आश्चर्य दृश्य देखो कि वहाँ जो है एक युवती बड़े दुखित चित्त में बैठी भई और सब जो है सब जगह घूमी आई द्रविड़ देश में, गुजरात में, सब जगह पर वहाँ उसको कुछ शांति नहीं मिली और वहाँ जो है भक्ति की कोई प्रसार नहीं हो और वहाँ जो ज्ञान वैराग्य जवान है

और यहाँ वृंदावन में आके और वो जो है एकदम बूढ़े हो गए, और भक्ति जो है जवान हो गई, अचेतन पड़ गए। यहाँ पे नारद जी पधारे। नारद जी ने महाराज जो है गीता को पाठ सुनाया, वेद सुनाए और भी महाराज पुराण की कथा सुनाई, पर जो है ये बिल्कुल भी हिले डुले नहीं। बड़ी चिंता करने लगे नारद जी, मैंने जो है ये सब कथा सुनाई, पुराण सुनाए, गीता जी को पाठ सुनायो, पर जो है ये तस्से मच नहीं भाई, भक्ति बराबर जगा रही है। और उनकी जो स्त्रियां आसपास में बैठी हुई हैं उनको धैर्य दे रही हैं कि आप चिंता मत करो मुनिवर। नारद जी वहां पधारे, यह देख कर महाराज जो है वो बड़े दुखी है वे लगे, आप जो है चिंता मत करो, भगवान जो है इसमें सब आनंद करेंगे और अवश्य तुम्हें शांति प्राप्त होगी। फिर भी नारद जी ने पूछो कि आप कौन हैं और आप अपने दुख को कारण बताओ कि आप कैसे दुखी है रही हो। महाराज मैं सब देशन में घूमी आई और सब देशन में घूमती हुई जो है पर मेरे तय कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर मैं बाद में जो है वृंदावन में आई, ये मेरे दोनों पुत्र जो हैं ये बूढ़े है गए और मैं जवान हो गई। और ये आप जो देख रहे हैं ये जो स्त्रियां बैठी हुई हैं, गंगा यमुना नदी हैं, ये सब सब मेरे को धैर्य बना रही हैं, पर क्या करूं ये काल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए और मैं जवान हो गई। ये वृंदावन में आए के ये दोनों ज्ञान वैराग्य बूढ़े है गए, जब विपरीत है गयो जा शोक से मैं व्याकुल। नारद जी मेरे ताई कोई उपाय बताएं आप, मैं क्या करूं और मैं कहाँ जाऊं। नारद जी इनको समझा रहे हैं, देवी आप चिंता नहीं करें, भगवान रक्षा करेंगे। नारद जी ने कहा तुम्हारे दुख को कारण मैं समझ रहा हूं, भगवान जो है तुम्हारो अवश्य दुख करेंगे, आप कोई चिंता मत करें। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के ताई बड़े बड़े पुराण गीता सब वेद ये सब सुनाए, पर ये महाराज टस्से मच नहीं हुए, इनको होश नहीं आयो। इनके जब होश नहीं आयो नारद जी घबरा रहे, नारद जी जो है विचार करने लगे मैं क्या करूं। नारद जी घूमते घूमते महाराज जो है पहुंचे और वहां पर सनकाद ऋषि इनके ताही मिले। सनकाद ऋषि ने कहा है नारद जी इनको दुख को कार्य यही है कि आप जो है सत्कर्म करें। सत्कर्म को मतलब है श्रीमद् भागवत कथा इनको महाराज सुनाए। यत फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना, तत्फलम लभ्यते सव्यकम कलौ केशव कीर्तनात। हे देवी, सबसे बड़ो कलयुग में जो है भगवान को संकीर्तन है। आप नारद जी का चिंता मत करो, भगवान जो है आपके दुख को अवश्य दूर करेंगे। नारद जी महाराज ने इनके लिए महाराज जो है श्रीमद् भागवत सुनाई। सुखदेव जी ने जो कथा कही वही नारद जी ने इनके ताई सुनाई और जो है आकाशवाणी भई कि आप चिंता नहीं करें और जो है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानम यश स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतो गीतम शुकादि भी। सुखदेव जी ने जो कथा कही वही नारद जी ने इनके ताई सुनाई। नारद जी ने भागवत सुनाई और ज्ञान वैराग्य महाराज जो है उठ के खड़े हो गए और महाराज जो है भगवान को कीर्तनाद करने लगे।

नारद जी ने महाराज जो है इनके लिए कथा सुनाई और दोनों ज्ञान वैराग्य महाराज जो बूढ़े थे भगवान कृपा से वो भी महाराज जवान है गए और भक्ति जो है दोनों को महाराज ज्ञान वैराग्य को लेके जहाँ वृंदावन में जो है सर्वत्र घूमने लगी। नारद जी को महाराज यशगान करवे लगी, नारद जी आपने जो है हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी और आपने इनके लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और मेरा सारा दुख दूर महाराज है गो। श्री कृष्ण शरणम।

श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे ब्रज साहित्य कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भक्ति को मर्म, इस विषय पर प्रसंग। कथाकार थे गोविंद गोस्वामी। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी संध्या 6:31 पर हम प्रसारित करेंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। यदि आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का फिल्मी गीत, तो भेजिए हमें व्हाट्सएप संदेश। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर 9412-25-575।

श्रोताओं याद रखिए, रात्रि 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के सातवें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा। दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने वैश्विक संकट में भी ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है।
1: आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व

0: नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली हैं, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है, जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने एक क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
0: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। और प्रगति होगी, नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों से नवाचार व अनुसंधान को राष्ट्र निर्माण तथा जन कल्याण से जोड़ने का आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 7 मंजिला इस परियोजना के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएचयू प्रशासन के अधिकारियों को भी परियोजना की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुजुर्गों को समर्पित यह अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग देश का तीसरा तथा उत्तर भारत का प्रमुख वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्र होगा। केंद्र में बुजुर्गों के लिए मल्टी स्पेशलिटी जेरियाट्रिक वृद्धावस्था चिकित्सा ओपीडी संचालित की जाएगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
3: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है। और पक्षपात के तहत नहीं, निष्पक्ष

0: सबका के साथी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम दिया।
1: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
2: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था, और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के

0: 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौला कुआं के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं कल से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
4: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। जाओ श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम शाम सुहानी सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, फिर से हाजिर हैं आपके संदेशों और फिल्मी गीतों के साथ कार्यक्रम शाम सुहानी में। कार्यक्रम में लेते हैं पहला संदेश। संदेश प्राप्त हुआ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुदा वज्रसेन का। अगले संदेश के साथ जुड़े हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी शिवन्या और अनु गोस्वामी, मामूलवाड़ी महारा से सुपान ताइडे, वसंतराव भोजने, पीएस नहावकर, तुषार करांगले, धनौरी तेलीवारा से निसार सलमानी, नौशाद आलिया आयान, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका भानु प्रकाश, मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा परिधि, मायरा सुरोशे वाशिम महारा से जुड़ चुके हैं, निर्मला विशाल सोपान और नारायण नरवेल महाराज से, नेहरू चौक बैठड़ से सुरेश अनीता आरती पूजा प्रसाद सोनल सिया जाधव। सोंगा धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी मोहित।

कुमार, देविका गजेंद्र और हेयांश चंदन, चौहरदा बागपत से संजय नमन अपार ढींगिया। अगली फरमाइश के साथ दिलीप, हर्षा, अक्षय, रुद्रा और रामेकर परिवार के सभी सदस्य अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, योगिता, अंजू, रज्जन, हेमंत और धर्मदास वाधवानी, जवाहरनगर दुर्ग से अर्सी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, कुंभारगली श्रीरामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका दले, पुनावली पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा सोन बने, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, स्टेशन रोड जमशेदपुर से। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श और सार्थक अलौकिक चंसौलिया जुड़ चुके हैं। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ सायना और निवान शर्मा। अगली फरमाइश के साथ मोहम्मद बुराउद्दीन, फजान, फरहान, समायरा आजमीन श्रोता जुड़े हैं तेलंगाना से। गांधीनगर गुजरात से सुरेश, मंजुला, विशाल, निशा जुड़ चुके हैं। राजनगर मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता, रविराज, गौरव और इनके सभी मित्रगण। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा, सुधाकर, राजे यादव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, सर्वद, प्रणाली, सानवी, कल्पना मराठावाड़ा से। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल और इनके सभी परिवारीजन। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, नितिन और किरण शर्मा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता, गीता जुड़ चुके हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा, टेलू नायक, इन्हीं के साथ मधु नायक। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। कनेरा मोहल्ला बीकानेर से पटियाला से मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश, गौरव, गरिमा शर्मा। सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत। गीत को आवाजें दी हैं राणा और सुनिधि चौहान ने। फिल्म का नाम वंस अपॉन टाइम इन मुंबई। गीत रचना प्रीतम की, संगीत इशात कामिल का।

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्याम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट हेमलता। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, बेबी व्योमिनी, पुरंजय कविता और प्रजापति परिवार के सभी सदस्य, साधु शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। अगले संदेश के साथ अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान जुड़ चुके हैं। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, उमेश प्रमिला बंछोर दुर्ग छत्तीसगढ़ से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा, राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान और तुलसी मस्कीन पंचकुला चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, स्वीटी और इनके सभी परिवारीजन, गुजरात से धीरज और इनके समस्त मित्रगण, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे, बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब सुधा, काजल, मीरा और अनामिका जुड़ चुके हैं। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसुतासु, अर्णव और सत्यमानंद, दरियापुर भावली महाराज से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक येले, शेरीवड्डी रकुला से अरुणा, बलदेव, आदित्य दामोदर, ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज जुड़ चुके हैं। गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र डूडी, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा, कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना अक्सर, नाजिया इब्राहिम और अदीब। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं। सिद्धार्थनगर दरियापुर भावली से आप सभी पहले भी जुड़ चुके हैं।

हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकैस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से। अगली फरमाइश के साथ मध्य प्रदेश से सोनाली, मोनिका और रानू। मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर, साकिब अलमास, छोटू और हसनैन पवार, खंडवा से आप सभी श्रोता जुड़े हैं। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। झालावाड़ से ही मनभावन, नैना सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुनिदीबाई बागरी। महादेव पारा से मीरा, सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़े जुड़ चुके हैं। नांदुरा मारा से केके हिवराले, साधना, प्रतीक और इनके समस्त परिवारीजन। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशु, रिदान खुराना, रवि कुमार, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरुकीरत और गुरुशब्द। अंबाला हरियाणा से लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला, लाडली और सक्षम चौबे। डोंडी लोहारा लोनी से नसीमुल और दानिश गुनौरी। अगली फरमाइश के साथ निजामाबाद तेलंगाना से अजीज, मतीन, सादिक और फारूक। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं। कनाडा से निखिल, नीति और महरीन भाटिया। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिद मंसूरी, कमरून, निशा, सविस्ता, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। बालों से उमाराज, कुलदीप, जगदीश, प्रभा और इनके समस्त परिवारीजन। मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। बुलंदशहर से ये सभी श्रोता जुड़े हैं। पंजाब से बालकृष्ण, प्रवीण, मुनीश और राहुल शर्मा। लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे। यवतमाल महाराष्ट्र से इंदिरा बिहारी कॉलोनी दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी और इनके सभी परिवारीजन। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ जुड़ा है सनावत से। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर, अलकमा, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़। गोगामा से इसहाक लोलामनी और उमर अयूब शेरी। प्रभाकर जोदले और इन्हीं के साथ आरती जोदले, नांदेड़ महाराष्ट्र से। भाई अनवर अंसारी, नईम, आफताब, अफरोज और बेगम राजिया, गंडवारा, उत्तर प्रदेश से। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत। गीत को स्वर दिया है साहिल हाडा ने, फिल्म का नाम सरबजीत।

कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित लक्की और तानिया नारंग, कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले, सुजाता प्रतीक और इनके समस्त परिवारी जन, जलालाबाद वैसे सुरेश गंगरेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहरा जहां जुड़े हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। कुप्टी मारा से बंडू लोहार, माया सिवान, चंद्रकला और देवीदास, करणवीर हाउस बुच्चू कैंचिया, बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करण, दीपिंदर, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजोत जुड़ चुके हैं, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी, योगेश, संध्या और डीकेश, संदेश प्राप्त हुआ रसेड़ा छत्तीसगढ़ से, सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण और निका श्रीनिजा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल, अजीत आयुष, नंदिनी जंगेल, धमडा ग्राम सुकरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंगेल, अररिया बिहार से फैसल इमाम, अफजल अकमल, प्रवीण और इनके समस्त परिवारी जन, बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र बोती, कुलदीप कंवल।

लातूर से संगीता जैन, पीआर जैन और सूरज जैन, नांदेड़ से जुड़े हैं प्रकाश जैन। राजनगर बाजार से फूलो, अजय, ज्योति, श्वेता, मालती और शोभा, इन्हीं के साथ कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता। राजेशन, सुरेखा, शुभम, अक्षय और इनके समस्त परिवारी जन जुड़ चुके हैं खंडवा से। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता, समस्तीपुर बिहार से मीरा, ज्योति, रोहतास बाजार से सोनम और अनामिका, अजय सोनवने, करिश्मा अविका, साइसा सोनवने, कोयते बस्ती पुनावले से, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराज से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर। अभय कुमार सनातनी, शिवानी, प्रियंका, रिया, जिया तुषी, आयुषी, अनिरुद्ध, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, बसंतलाल, पन्नालाल और इनके समस्त मित्रगण पीहरा बाजार झुमरी तलैया से, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल रॉय जुड़ चुके हैं, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, महक खुशदिल, सुनीता, आरजू हसमुख, शक्ति और बुलबुल, इन्हीं के साथ संजीव जिंदल, नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर, प्रतीक और शंभु साहू राजनगर बिहार से जुड़े हैं, मेहर नगर उमरखेड़ पंजाब से अभिजीत गवानकर, सिद्धांत, एकांश और टुकटुक। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है विजय महोबिया, कविता, सोनू मोनू रानू, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू का, शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी और इनके समस्त मित्रगण। पैटर से जुड़े हैं शेख चांद, गुररान, फुरखान, अदनान, नुमान और जाकिया। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल, डुग्गू और भाविक सिक्का, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्य रामटेके, अढ़ार नांदका छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन आसना और कैफ अंसारी जैन मंदिर वाली गली कुरावली से जुड़े हैं, सैयद आलम हाशमी, सलमा, असद अरहाम और पूरा हाशमी परिवार जुड़ा है अजमेर से, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा, दीपक और अनुषी श्याम कुंवर, दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता गौरव, राधिका, दीपिका सैनी, चौक खंडवा से, वरंगल से खजा, आयशा और तबस्सुम, पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विकी, नानू, रौनक, रौनक और इनके समस्त परिवारी जन। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत। इसी गीत को सुनना चाहा तेलंगाना से शेख अल्लाह बख्श, राबिया, राहिम और दानिश ने।

श्रोताओं, इसी गीत को सुनने की हमें फरमाइश मिली खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा की, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता रजत, मयंक और इनके सभी परिवारीजन, सनावत से शेख मूसा, अशोक वर्मा और राजकुमार।

इस गीत को स्वर दिए थे अरिजीत सिंह, शादाब और अल्तमश फरीदी ने। फिल्म का नाम राब्ता। और इसी के साथ कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
2: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कम्प्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
3: नमस्कार।
2: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
3: देखो 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आश है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी वो सब लड़ते थे इलेक्शन, उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसको

0: हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कम्प्लीट कर लिया?
0: देखिए, हमारा कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है। और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
0: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा वे समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद ही 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या,

0: के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी, उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था, आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया 27,50,000 पर हम पहुँच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया, और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में, 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने PKC की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है, हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको बैठ जाती थी, और फिर उसके बाद बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से

0: पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की। आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है। और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था, तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती, वो पूरी देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहां के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता, और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी, तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था, और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था, और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट, और उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर, उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है, जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए, उनसे सीखे हम। जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं।

0: तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने दो शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं नहीं वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था, और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्र से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। न उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, न किसी को कोई पैसा देना पड़ा, न जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि ये आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश न हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब के जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है। तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो? उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया? ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का 3रा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबिक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबिक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबिक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबिक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबिक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबिक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबिक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
3: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा, उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं तीन प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी तीन बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
4: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है, तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी, जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले, इतने सारे, अभी हर

0: जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंदर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल डीपीआई कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता, और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने में।
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं है, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुलेगा, तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल

0: प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
1: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहां पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
0: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की, आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा

0: और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट 2 गुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका

0: विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 2,50,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी

0: कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
2: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase in Europe. More than 120 Indian startups, along with global investors, CEOs and technology leaders, will participate in the event. Prime Minister Modi will also hold bilateral talks with President Macron. Discussions are expected to cover defense, artificial intelligence, space, trade, education and other global challenges. Here in Nice, expectations are high that the visit will inject fresh momentum into one of India's most trusted strategic partnerships. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his 2-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. Slovak President Peter Pellegrini, in a social media post today, said that Prime Minister Modi's historic visit will open new

तनिष बागची और जुबिन नौटियाल, साथ ही असीस कौर की आवाजों में आपने सुना ये गीत फिल्म शेरशाह से। शब्द रचना और संगीत तनिष बागची का।

शुभ मंगल ज्यादा सावधान। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर आयुष्मान खुराना का था। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं सुहाने तराने।

कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर, श्रेया घोषाल और सुजैन डिमेलो की आवाजों में ये गीत फिल्म वीर से। इस गीत को लिखा गुलजार ने, संगीत साजिद वाजिद का था। और इसी के साथ सुहाने तरानों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारा अगला अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।

0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
1: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई यह यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
1: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
2: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे, और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया, और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं, और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर। ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन, और ई मायने परम कठिन आसन। ऐसे हमने कैटेगरी तय की, और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्टर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
1: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
2: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है, और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया, और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
2: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल

0: का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे, और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को, और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया, और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूं, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्होंने आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर

0: आगे बढ़ेंगे। भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है, संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे DU म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पर, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है, ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, एक तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है, और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मूरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेग में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बल्मा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहता है। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये

0: म्यूजिक सीन की, इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं अगर हम, क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
1: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी.
0: ऐसा क्यों?
1: अब वो ज़्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है. आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे, और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीज़ें. तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है. उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं.
0: शौर्य आप बताइए।
2: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
2: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे
0: हाँ, वो
2: 500
0: लोग
2: रुपये एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
1: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं अब. हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूज़िक फ्री में सुनना है. हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने. 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है. ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक. पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते
0: तो अभी आप लोगों ने क्या
1: हैं.
0: तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने किया तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं
1: जी हैं,
0: रादर देन योर ओन कॉम्पोजिशंस?
1: बिल्कुल हैं. पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज़ को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं.
0: अच्छा,
1: हम बोलते भी हैं वीव कुल्फी 5 डेट.
0: जैसे भी आपने एग्जांपल दिया, संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे
1: जी
0: आपने एक नया
1: जी
0: टच दिया।
3: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नज़रिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज़ व्हाट वी एज अ बैंड ऑल्सो डू.

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

बीते 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी

0: जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. Ramayana का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शेरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े ही विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमें धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूँ, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them kamb dashurpanagas alarcha the
0: world. उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
4: Going and proposing to Rama and Lakshmana from that Rakshasi bhavam, the hand goes into a beautiful Pallava.

राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना।

कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: परिवार में हुआ था। कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन
1: कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
2: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिवप्रसाद। यू शिवप्रसाद बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम इनहेरिटेड हिज म्यूजिकल फाउंडेशन एट एन अर्ली एज। He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu, and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar, is set to Adita.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नू वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्यागराजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Thyagaraja, is set to Rupaka.

0: अभी आप सुन रहे थे यूशिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यूशिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ मृदंगम पर विश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashwani.
2: साथ में रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008।